नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। इसक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि तदनुसार 12 जून 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्यवेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय,

0: करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम इंटरनेट स्ट्रीमिंग और डीटीएच पर सुन सकते हैं, और इसके अलावा एक मोबाइल एप्लीकेशन है न्यूज ऑन एआईआर, जिसके जरिए आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद दुनिया के किसी भी कोने में और दिन के किसी भी समय ले सकते हैं। यह है विविध भारती। वंदन बार

चिंतन। बाल गंगाधर तिलक का कथन है, आपका लक्ष्य किसी जादू से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। भक्ति संगीत।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। दिन के कोरे पन्ने पर छा जाते हैं कुछ गाने, बनकर आपके मीत हर रोज सुबह 7 बजे भूले बिसरे की। आलस भरी भोर कोई कहे आपसे दुलार के, हर रोज सुबह 7:30 बजे हम हैं राही प्यार के।
1: हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोली,
0: उंगली पकड़ कर चलती है आपके साथ। हर सुबह आपकी अपनी विविध भारती की आवाज, सुबह 8:30 पर चित्रलोक। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: थी धन्य वो उनकी जवानी।

ध्वनि तरंगों की तल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरूखा लिखा जोखा आज दिन भर के कार्यक्रमों का। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का अनाज भाग 217। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है, गज तत्वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। ये कार्यक्रम आप शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के, 8 बजे समाचार प्रभात। सुबह 8:15 पर और दिन में 2 बजे आप सुनेंगे वंदे मातरम, एक जय घोष। आज 32वीं कड़ी, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 पर चित्रलोक सुनिएगा। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित है अभिनेत्री श्यामा पर। 9:30 पर भी सुन सकते हैं। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश। 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे सुरीला सफर। दिन में 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे हेलो सहेली। 4 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी, अंजलि की कहानी सुनिएगा। कहानी सुनेगा अंजलि, लेखक है अरगवान अब्बे। छाया गीत शाम 5 बजे। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन सुनिएगा। शाम 7 बजे जयबाला। 7:45 पर गुलदस्ता।

रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका सफेदी के पेड़। लेखक रेवती सरन शर्मा, निर्देशक दीनानाथ। आपको बता दें कि सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। नौ बजकर तीस मिनट पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री श्यामा पर।

10 बजे छाया गीत होगा, 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात, रात्रि 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग, ये था लेखा जोखा आज दिन भर के कार्यक्रमों का, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। फिल्म संसार के जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

श्री राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें श्री राम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के प्रति सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता के अंतर्गत आज से हम आपको सुनवा रहे हैं गज वाद्यों पर आधारित श्रृंखला गज तत् वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। सुनिए इसकी पहली कड़ी।
1: नमस्कार। भारतीय संगीत में गज वाद्यों की अपनी परंपरा रही है। गज, जिसे अंग्रेजी में बो कहा जाता है, प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथकारों ने गज से बजाए जाने वाले वाद्यों को तत्वाद्य के नाम से संबोधित किया है, किंतु 20वीं शताब्दी के कतिपय लेखकों ने प्रहार से वादन किए जाने वाले वाद्यों को तत्वाद्य और गज से बजाए जाने वाले वाद्यों को वितत्वाद्य की संज्ञा प्रदान की है। गज वाद्यों को वितत कहना उचित नहीं है, क्योंकि प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रंथों में अवनद्य वाद्य को वितत वर्ग के अंतर्गत बताया गया है, इसलिए इसे गज वाद्य कहना या गज तत्वाद्य कहना अधिक उचित प्रतीत होता है, जिससे यह स्पष्ट समझ में आता है कि वे वाद्य जिसमें तार लगे होते हैं और उन्हें गज से घर्षण करके बजाया जाता है। गज वाद्यों की यह विशेषता है कि इन वाद्यों द्वारा एकल वादन अर्थात सोलो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं और इन वाद्यों से साथ संगत भी अच्छी तरह की जाती है। इतना ही नहीं, इन वाद्यों का वाद्य वृंद में बहुत प्रयोग किया जाता है। वर्तमान भारतीय शास्त्रीय संगीत में इस वर्ग के वाद्यों में वायलिन, सारंगी, इसराज, दिलरुबा, तार शहनाई आदि वाद्य प्रचलित हैं। श्रोताओं, आज हम सर्वप्रथम वायलिन वाद्य की चर्चा करेंगे। वर्तमान में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारतीय संगीत में वायलिन ने अब अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। वायलिन को उत्तर भारत में बेला नाम से संबोधित किया जाता है। कहते हैं कि रावण हस्त वीणा लंकाधिपति रावण द्वारा बनाई गई थी, जिसके दो तारों को गज से बजाया जाता था। संगीत सुधाकर, संगीत रत्नाकर, संगीत राज आदि ग्रंथों में गज से बजाई जाने वाली पिना की वीणा का वर्णन उपलब्ध होता है, किंतु यह स्वीकार करने में हमें जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए कि वर्तमान वायलिन पाश्चात्य देशों की ही देन है। वायलिन का आविष्कार किसने किया, यह आज भी एक विचारणीय प्रश्न है। कुछ विद्वान गास्पर ट्विफो प्रगर को वायलिन का आविष्कारक मानते हैं। कुछ चिंतकों का चिंतन है कि वायलिन को क्रिमाना के आंद्रे आमाती ने बनाया। कुछ गुणीजनों का विचार है कि वायलिन का निर्माण गैस्पारो बर्तलोत्ती अर्थात गैस्पर द सालो द्वारा किया गया है। कुछ जानकार वायल से वायलिन की उत्पत्ति मानते हैं और कुछ संगीतज्ञों का मानना है कि वायलिन का विकास रिबेक और रबाब वाद्य के आधार से हुआ है। इसका आविष्कारक भले कोई भी हो अथवा किसी वाद्य से इसका विकास हुआ हो, पुष्ट प्रमाणों के आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वायलिन ईस्वी सन 1505 से 1530 तक निर्मित हो चुका था। भारत में वायलिन का

प्रयोग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हो रहा है। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में वायलिन का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय श्री बालू स्वामी दीक्षित जी को दिया जाता है। उत्तर भारत में वायलिन का शास्त्रीय संगीत में प्रयोग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। श्री पी ए सुंदरम अय्यर, श्री गगन बाबू, बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां, श्री बलवंत सिंह हुगुन आदि कलाकारों द्वारा वायलिन पर उत्तर भारतीय संगीत को प्रस्तुत किया गया। सच पूछा जाए तो इन्हीं कलाकारों द्वारा वायलिन की लोकप्रियता का श्री गणेश हुआ। तत्पश्चात श्री वी जी जोग, पंडित गजानन राव जोशी, श्री डी के दातार, श्री एम एस गोपाल कृष्णन, डॉक्टर श्रीमती एन राजम, श्री शिशिर कणाधर चौधरी और श्रीधर पारसेकर आदि कलाकारों द्वारा वायलिन का केवल प्रचार ही नहीं बल्कि इनके द्वारा इसकी वादन तकनीक को भी अत्यंत समृद्ध किया गया। तो आइए सुनते हैं पीडी सप्तऋषि जी का वायलिन वादन। राग है जौनपुरी।

गजतत्वाद्य, गजवाद्यों पर आधारित श्रृंखला की ये थी पहली कड़ी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल के सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। दिन के कोरे पन्ने पर छा जाते हैं कुछ गाने, बनकर आपके मीत हर रोज सुबह 7 बजे भूले बिसरे की। आलस भरी भोर कोई कहे आपसे दुलार के, हर रोज सुबह 7:30 बजे हम हैं राही प्यार के।
1: हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोली,
0: उंगली पकड़ कर चलती है आपके साथ हर सुबह, आपकी अपनी विविध भारती की आवाज। सुबह 8:30 पर चित्रलोक। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आइए सुने भूले बिसरे गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री को जो अपनी शोखी के लिए जानी जाती हैं। उनका नाम है श्यामा। सन 1954 फिल्म भाई भाई, सन 1956 फिल्म भाई भाई। श्यामा की चंदंग में आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में है।

भाई भाई फिल्म का गाना गीत रॉय की आवाज में था, राजेंद्र कृष्ण की बोल संगीत मदन मोहन का था। एक बार फिर आ रही है गीता रॉय की ही आवाज। मजरू सुल्तानपुरी ओपी नैयर फिल्म आर पार।

भाभी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में था। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, संगीत चित्रगुप्त का था। विविध भारती से आप बोले बिस्तरे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

की था राजेंद्र कृष्ण की बोल थी और श्री रामचंद्र की तरसी आशा भोसले की आवाज। दिन की इस भागदौड़ में सुबह के 7:18 हो चुके हैं। लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजों के सहारे आगे बढ़ते हैं।

शरद फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज में था, एसएच बिहारी के बोल थे, संगीत खुद हेमंत कुमार का था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं अपना घर फिल्म का गाना, गीता रॉय और मुकेश की आवाजों में, प्रेम धवन के बोल, रवि की तर्ज़।

इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम खत्म होता है, लेकिन विविध भारती से हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण जारी है। तो दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग रहिए। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

मेरा बाल बच्चा खा के देखो वेरी वेरी गुड मेरा चार्ली बादाम पिस्ता। मेरा नाम अब्दुल रहमान पिस्ता वाला मैं हूँ पठान खाने वाले का।

आने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान। खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा।

फिल्म का नाम था भाई भाई, राजेंद्र कृष्ण की बोलती संगीत मदन मोहन का था।

मजनू सुल्तान परी की बोल थी ओपी नैयर की तर्ज, आवाजें मोहम्मद रफी और गीता रॉय की थी। और अब ये कबाइल फिल्म है बरसात की रात, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू और साथी। साहिर लुधियानवी, रोशन।

सावन भादो फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में था। वर्मा मलिक के बोलते संगीत सोनिक ओमी का था। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में शकील बदायूनी का नगमा, नौशाद के बोल और फिल्म का नाम दिल दिया कर दिया।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
2: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है, उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है, इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
2: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है, और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया

0: कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 32वीं कड़ी।

0: बारिसाल अधिवेशन को पहले ही दिन मिले इस उत्स्फूर्त प्रतिसाद से बौखलाए हुए अंग्रेज अधिकारी जमा हुए युवाओं और नेताओं पर निर्मम लाठीचार्ज करके भी नहीं रुके। अधिवेशन के लिए आए सभी लोगों के नेता और आदरणीय स्थान रखने वाले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ब्रिटिश अधिकारी कैंप ने गिरफ्तार कर लिया। उस दिन अदालत की छुट्टी होने के कारण उन्हें मजिस्ट्रेट के घर ले जाया गया। वहां सुरेंद्रनाथ ने सरकार की तानाशाही की कड़े शब्दों में निंदा की। इससे चिढ़कर मजिस्ट्रेट इमर्सन ने अदालत की अवमानना के लिए उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही जुलूस में भाग लेने के लिए 200 रुपये का जुर्माना और अलग से लगाया। वकील और सबूत पेश करने का अनुरोध भी इमर्सन ने ठुकरा दिया। सुरेंद्रनाथ ने तुरंत यह जुर्माना भरा और सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अधिवेशन स्थल की ओर दौड़ पड़े।
1: वंदे मातरम शब्द पर प्रतिबंध लगाना, सुरेंद्रनाथ की गिरफ्तारी, उन्हें हुआ जुर्माना, लाठीचार्ज, ये सब गैर कानूनी था। उस परिस्थिति में भी वंदे मातरम की विराट गूंज के साथ अधिवेशन की शुरुआत हुई। वंदे मातरम गायन से सभा शुरू हुई। अश्विनी कुमार दत्त और सुरेंद्रनाथ बनर्जी अभी सभा स्थल पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए निवारण चंद्र दास गुप्त ने भाषण दिया। अध्यक्ष अब्दुल रसूल ने कहा,
2: हिंदू हो मुसलमान हो, हम सबको मिलकर ये आजादी की लड़ाई लड़नी है। हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। देश की भलाई के लिए हम में से हर एक को ये काम करना ही चाहिए।
1: ये भाषण चल ही रहे थे कि सभा मंडप के बाहर वंदे मातरम के नारे और शोरगुल सुनाई देने लगा।

0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी का सभा मंडप में आगमन हुआ। उनके आने से सभा स्थल पर जुटे युवाओं में और भी उत्साह भर गया। लाठीचार्ज के घामों से लहूलुहान हुए शरीर का ख्याल भी कार्यकर्ताओं को उस उत्साह के जोश में नहीं रहा। स्वयं सुरेंद्रनाथ भी इस प्रतिसाद से भाव विभोर हो गए। मंच पर पहुंचने के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अत्यंत संयमित स्वर में मजिस्ट्रेट के बंगले पर घटी घटना सुनाई। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल का भी भाषण हुआ।
1: बारिसाल का युवा नेता चित्तरंजन गुहा बुरी तरह से घायल हो गया था। एक दिन पहले ही निकले जुलूस में आगे रहने वाला यह युवक वंदे मातरम के नारे लगा रहा था और बाकी युवाओं से मिले प्रतिसाद से चिढ़े अंग्रेज अधिकारी ने इस युवक की बेरहमी से पिटाई की। उस खून से लथपथ हालत में भी वो वंदे मातरम के नारे लगाता ही रहा, इसलिए सिपाहियों ने उसे सामने के तालाब में फेंक दिया। साथियों के कारण उसकी जान बची। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि दिन दहाड़े सड़क पर वो भारत माता की जय जयकार कर रहा था। उस हालत में भी उसके पिता मनोरंजन गुहा उसे मंच पर लेकर आए। उनका भी भाषण हुआ।
0: दूसरे दिन 15 अप्रैल को सुबह फिर अधिवेशन शुरू हुआ। बिपिन चंद्रपाल युवाओं को मार्गदर्शन देने लगे। तभी बंग भंग विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संध्या के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय सभा स्थल पर आए। उन्हें देखकर तो प्रतिनिधियों ने फिर से वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। वंदे मातरम पूरे गीत का और मागो जाए जौन जीवन चले गीत का भी गायन हुआ।

0: अश्विनी कुमार दत्त ने सभा के सामने प्रस्ताव रखा,
1: जिस स्थान पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार किया, उस स्थान पर इस घटना की याद में एक स्तंभ बनाया जाए।
0: इस प्रस्ताव पर वहीं के वहीं अपने हाथों की अंगूठियां और पैसे देकर सदस्यों ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया।
2: उसी समय कैंप ने निषेधाज्ञा का आदेश दिखाकर सबसे वचन मांगा कि कोई भी प्रतिनिधि सभा समाप्त होने पर वंदे मातरम का घोष नहीं करेगा। बीते कल निर्ममता से लाठीचार्ज करने वाले कैंप को सभा स्थल पर देखकर उपस्थित जन समुदाय और भी क्रुद्ध हो गया। कैंप सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के पास गया और बोला,
3: लिसन, आई बी सेफ हियर विथ यू। Being a government officer, I have to obey the government orders.
2: सरकारी अफसर होने के नाते मुझे सरकारी हुक्म मानना पड़ता है। सभा समाप्त होने पर यहाँ जुटे लोग वंदे मातरम के नारे नहीं लगाएंगे, ऐसा आश्वासन आप दें, तभी मैं ये सभा आगे चलने दूंगा, अन्यथा अभी ही इसी समय सभा बंद करनी पड़ेगी।
0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित सभी नेताओं ने ऐसी सहमति देने में असमर्थता जताई। कैंप ने सभाबंदी का आदेश दिया। उपस्थित जनसमुदाय सभाबंदी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लोगों को समझाया,
1: कल बहुत बड़ा रक्तपात हुआ है, आज फिर उसकी पुनरावृत्ति किस लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन का हमारा उद्देश्य सफल हो गया है।
0: अध्यक्ष ने परिस्थिति पर विचार किया, अधिक विरोध से स्थिति बिगाड़ने की बजाय ये अधिवेशन सर्वसम्मति से बर्खास्त कर दिया, परंतु वंदे मातरम के संबंध में कोई भी वचन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्रोधित कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और भी जोर से वंदे मातरम का घोष करते रहे। खाली मंडप में रह गए केवल सशस्त्र सैनिक। अधिवेशन समाप्त होने पर बाहर निकल रहे लोगों से बिपिन चंद्र पाल ने कहा,
1: आज भले ही निषेधाज्ञा लागू की गई हो, फिर भी क्रांति की आग यहाँ भड़क चुकी है। आप सब अपने अपने गांव जाकर सभाओं का आयोजन करें और क्रांति की आग सब और फैला दें। आज का दिन शोक संतप्त होने का नहीं, बल्कि अत्यंत आनंद का दिन है।
2: अधिवेशन समाप्त कर घर जाने वाले प्रतिनिधियों का हर स्टेशन पर वंदे मातरम की घोषणाओं के साथ जोरदार स्वागत हो रहा था। बरिसाल से लौटते समय रेल में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से भगिनी निवेदिता ने कहा,
4: आपको जेल में बंद करने का सरकार का षड्यंत्र आपने विफल कर दिया है। अपने ही बुने जाल में ब्रिटिश सरकार फंस गई है। नैतिक विजय तो हमारी ही हुई है।
2: भगिनी निवेदिता की यह बात आगे सच साबित हुई।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 32वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग, समृद्धि नाइक, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है।
1: हम सफर मेरे हम सफर।
0: पहले यादों की वादियों में संग संग दिन में 11 बजे सुनते हुए रंग तरंग,
2: दिल में एक लहर सी,
0: ऐसे गाने जो चुरा ली आपका दिल। दिन में 12 बजे यादों की महफिल,
3: तेरा मुझसे है पहले का नाता।
0: दिन में 1 बजे एक अनूठी इबारत की डगर, सुरीला सफर।
4: तुम आ गए।
0: घड़ी की सुइयां जब बजाती है 2:30, तो बजती है सदाबहार नगमों की शहनाई। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, आपका जीवन संगीत।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

शुरुआत करते हैं कैसरुल जाफरी और संदीप श्रीवास्तव के लिखे इस गाने से। फिल्म का नाम है मेट्रो इन दिनों। अरिजीत सिंह और शाश्वत सिंह की आवाजें प्रीतम की तरह है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है।
1: हम सफर मेरे हम सफर।
0: टहले यादों की वादियों में संग संग, दिन में 11 बजे सुनते हुए रंग तरंग।
2: दिल में एक लहर सी।
0: ऐसे गाने जो चुरा ली आपका दिल, दिन में 12 बजे यादों की महफिल।
3: तेरा मुझसे है पहले का नाता।
0: दिन में 1 बजे एक अनूठी इबारत की डगर, सुरीला सफर।
2: तुम आ गए।
0: घड़ी की सुइयां जब बजाती हैं 2:30, तो बजती है सदाबहार नगमों की शहनाई। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, आपका जीवन संगीत।
4: विविध भारती से आप सुन रही हैं चित्रलोक।

0: फिल्म संसार के जाने माने कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
1: विशाल मिश्रा की आवाज में ये एनिमल फिल्म का गाना है।

जब शोर भरी दुनिया भी विविध भारती हो आपके संग, तो घुलता है सुकून का रंग। दिन में 11 बजे जब आप सुनते हैं रंग तरंग, गैर फिल्मी गजलें, गीत और कव्वालियों का सफर।

विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत। कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

प्रकृति से चित्रलोक, अलकायग्निक और शान की आवाजें। उनका नाम बस इतना सा ख्वाब है।

अब सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम। विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपको नए फिल्मी गीत सुनाते हैं। अब आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म होता है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: यह है विविध भारती।
3: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार हैं गुजरे जमाने के जानी मानी ऐसी अदाकारा जो हैं बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।

0: अभिनेत्री श्यामा लाहौर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। उनके माता पिता ने उनका नाम खुर्शीद अख्तर रखा था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम श्यामा पड़ा।
1: एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर
0: जी,
1: प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा, नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था छोटी लड़की का
0: जी।
1: तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर। तो कह लगे खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई।

0: मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया।
1: अच्छा, उस समय
0: और मुझे
1: नाम
0: वो
1: मतलब?
0: नाम इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है।
1: जी बिल्कुल।

तो 9 साल की नन्ही खुर्शीद ने पहली बार फिल्म जीनत की कव्वाली में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुर्शीद अख्तर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी उस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम में से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी। इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूंगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा।

गाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा हैं और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रही हैं। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम आता है।

श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थीं। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थीं। अब सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत।

0: श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही हैं श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, और उसका नाम था तराना
2: जी,
1: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब।
2: बिल्कुल।
1: और इसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निमी जी।
0: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते

हुए और सेलुलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।

1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गईं और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही फिल्म संसार में।

अभिनेत्री श्यामा ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, लीड रोल भी किए, चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना।

0: मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम किया है कि वो कहते हैं ना कि प्यास बुझ गई
1: जी।
0: उसका नाम है बिमल रॉय
1: जी,
0: गुरुदत्त
1: जी,
0: कारदार साहब, फिर सत्यन बोस, फिर शक्ति सामंता, फिर ऋषिकेश मुखर्जी, फिर एसपी ईरानी।

0: फिर बी मित्रा
1: जी,
0: और फिर आईएस जौहर, वो भी डायरेक्टर थे
1: जी।
0: और किन किन के नाम गिनवाऊं, बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी डायरेक्टर आए जिनके साथ वाकई मेरी तमन्ना थी कि मैं काम करूं।
1: जी,
0: वैसे तो मैंने बचपन से लेके अभी तक 60 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक आदि बचा होगा बेचारा
1: जिनके साथ
0: बेचारा कि जिनके साथ मैंने काम नहीं किया।
1: जी। दोस्तों आइए अभिनेत्री श्यामा की मशहूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिर्जा साहिबा, खानदान, छोटी बहन, स्वर्ण सुंदरी, भाई भाई, छू मंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छांव, भागवत महिमा, शबनम, निशाना, रूपलेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आईं, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकृष्ट किया। श्यामा की उस दौर की फिल्में हैं खेल खेल में, सेवक, अजनबी, नया दिन नई रात, हनीमून, सूरज और चंदा, कंगन, जिंदगी जिंदगी, पायल की झनकार वगैरह वगैरह। अभिनेत्री श्यामा चली गईं इस फानी दुनिया से, दे गईं फिल्मी दुनिया को खलिश और सन्नाटा। जब इंसान नहीं रहता तब वो हमारे आसपास और ज्यादा रहता है, उसके न होने का एहसास कचोटता है, दुख देता है। जब सुनी थी श्यामा जी की आवाज तो वे सामने थी, उन्हें छूकर उन्हें नमन किया था, लेकिन आज सिर्फ उनकी आवाज है, वे नहीं है हमारे साथ।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

हेलो फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश के इस सफर में बहुत सारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और इस बातचीत से हम एक दूसरे को जान पाते हैं विचारों से और भावनाओं से। और हेलो फरमाइश एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना संदेश, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। तो

0: आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो प्रस्तुत है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अभिजीत प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। मैम कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और हम लोग दिन भर जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए सारे कार्यक्रम से जुड़े रहते, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हेलो सहेली हो, सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीत माला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो अभिजीत जी, हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में।
1: जी
0: अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा जैसे बैट बल्ला है, वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे। बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: कभी
1: बिल्कुल
0: घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होती है मैम। आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक, इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं है आज के लोग तो। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए, आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: अस्सलाम वालेकुम,
0: वालेकुम सलाम
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: जलाल अहमद।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम, मैं शाल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बाद

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: जी मैं फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैजल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, मतलब डिविजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात तो मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले की बात हुई है विविध भारती में फरमाइश में।
0: अच्छा ये
1: और आज
0: बताइए,
1: आपकी
0: आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल।
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है हमारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन
1: क्रिकेट
0: बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम लोग तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे। बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं,
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं, सुबह
0: अच्छा
1: क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: हमारे तो फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह क्या बात है। तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: महीने से ज्यादा से ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर से ज्यादातर चलता नहीं था, होते थे हम लोग शायद में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा, तो
1: फुटबॉल मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात।

0: बताइए क्या।
1: फैमिली की बहुत चाहत थी, मेरे जिम्मेदारी हमारी गुजर गए, जिम्मेदारी घर के आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। वादा

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब।
1: जी और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो अभी गर्मी है भाई, बहुत उमस है,
1: जी
0: पसीना आता है,
1: जी
0: परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी
0: बताइए अरुण साहब, अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है। आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं। आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी

0: का हर चीज का शौक है लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है नारी कमेंट्री सुनते हैं।
1: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने, ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे ग्रामीण खेल।
0: नहीं ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
1: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली, आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
0: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी हर चीज खेली है हमने।
1: अंटी क्या होता है?
0: अंटी वगैरह खेलते हैं ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, छाटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं उसको, मारते हैं।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
0: अंदाज से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
1: अरे वाह क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
0: जी जी देखें बरसात तो आने वाली है, कम कम तो बारिश भी हो रही है।
1: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का आपके गीत के जरिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगी लाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगी लाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं
1: जी काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी
0: कैसा लग रहा है अब आपको, जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी भेजे हैं।
0: ठीक है,
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी। और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ मैम, किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है, सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?

0: जी मैम, मैं मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
1: अरे बैटिंग करते हैं या बॉलिंग?
0: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
1: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप। तो
0: जी
1: सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
0: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
1: अरे फिर तो आप
0: जी
1: मैन ऑफ द
0: मैम,
1: मैच हो गए।
0: जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
1: अच्छा कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: आज मुझे खुदा काबा फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, रब को याद करूं पिछड़ा याद मिला दे वो रब्बा।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम,
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है किराना, वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं, है ना? तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ, इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा है, रेडियो से तो।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, हम लोग कबड्डी चलता था मैडम।
0: अच्छा, कैसे खेलते थे? अच्छा लगता था? गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल की बनाते थे कि हाई रुचि थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है, कि क्या वो खेला करते थे? हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना?
1: हाँ मैडम सही बात है,
0: तो
1: बचपन होता ही है, बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम बचपन।

0: जवानी अच्छी रही थी मैडम।
1: हाँ, जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का, या फिर काम में लग गए?
0: हाँ मैडम, क्या बोलते, सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था, जब जॉब लग गया था मतलब सरकारी मुहावरे में फायदा नहीं था, लेकिन मैंने फिर 2.5 महीने का छोड़ दिया। जानो 2 महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जेब खर्चे के लिए
1: अच्छा, छोड़ा क्यों?
0: मैडम, क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम। उस जमाने में 10वीं पास करना लोहे के चने जमाना जैसा था,
1: हाँ
0: पहले
1: हाँ
0: से 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
1: अरे
0: मैंने
1: वाह,
0: कसम खाया था कि मैं 10वीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने,
1: क्या
0: फिर आगे
1: बात,
0: पढ़ना नहीं था 10वीं पास करके, क्योंकि उस फ्रेंड में तो 10वीं बहुत काफी था उस जमाने के हिसाब
1: बहुत अच्छी बात है कि
0: से।
1: आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप
0: जी
1: अपना
0: मैडम,
1: घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
0: जी मैडम,
1: तो बताइए, अब कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: झुक गया आसमान का मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, लो झुक गया आसमान भी इसको मेरा।
1: रंग लाया, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है जो

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही, मंदाकिनी दीदी।
0: अरे आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी आपको।
0: अरे क्या बात
1: हेलो,
0: है,
1: कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं आप? बताइए,
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी,
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ और अजीत भारती के कार्यक्रम मैं सुनती हूँ दीदी।
0: और क्या शौक है आपके ये बताइए।
1: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी, और रात दिमाग को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ मैं। आपका झमकार सुनकर मन चाहे चालू जो करे वो, उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
0: तो मनचाहे गीतों के लिए आप हमें

0: उस कार्ड में अपना नाम पता भेज रही है, पसंद का गाना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा ऐसे लंगड़ी खेलती थी दीदी, मैं छोटेपन में अभी खो खो खेलती थी। और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने नहीं देती थी दीदी,
0: क्यों?
1: बहुत लाड़ती थी ना
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो
1: मैं
0: खेलने का ही नाम होता है ना। बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपने बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे।
1: कंचे खेलती थी। मैं अपने बहन के साथ खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरी बहन बना के देती थी मेरे को।
0: हाँ, याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना। चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम तो है खानदान, और गाने के बोले दिल गर्दन के उड़ते बादल।
0: आ आ आ, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम, नमस्कार। युद्ध भारती, मैं जी
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना, कहाँ
1: डोंगरे बोल रहा हूँ, सोलापुर
0: से?
1: में, बारसी से। अच्छा
0: अच्छा, स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: हूँ मैडम, तुम
0: अरे वाह, क्या बात,
1: कैसे?
0: हम भी अच्छे
1: युद्ध
0: हैं।
1: भारती के बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना सब पर अच्छा लगता है, आदमी नई विचार तो करे ना तुम कार्यक्रम, सुहाना सब पर 1 बजे से 2 बजे तक।
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: हाँ अच्छा लगता है, जैसे हेलो फरमाइश, गीत गा तो बड़े
0: और
1: अच्छे कार्यक्रम है। नहीं
0: वो आपका मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: मैडम, नहीं लिखा, अभी लिखूंगा इनसे आगे,
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: लिखता अभी इनसे आगे बहुत पत्र लिखता मैं।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाएं आपको?
1: दिल दिल का वो प्रिया प्रिया क्यों भूला गया ये।

0: हेलो फरमाइश का आइसक्रीम है ये।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी मैम, हम धेमाजी असम से विमल बसंतर बोल रहे हैं। मैम
0: विमल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक है, मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ। मैम
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम हम तो सिलाई करता हूँ, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, फिर सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे तक।
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम,
0: हाँ
1: इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए इसे चलता नहीं।
0: अच्छा, समय रहते घर पहुंच जाते हो।
1: जी मैम जी।
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?
1: जी मैम हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोड़ा इसे करते रहता है, और सिलाई का अलावा दूसरा सब में रखता हूँ दुकान, और दूसरा है सामान।
0: हाँ, और विविध भारती के लिए कब समय निकालते हो?
1: जी मैम भीड़ भाड़ तो सुनते रहता हो, लेकिन पहली बार आज फोन लगाए मैम,
0: कैसा महसूस कर
1: खाना
0: रहे
1: तो
0: हो?
1: सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है सुन के मैम।
0: अच्छा, क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो?
1: जी मैम आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग से आज बातचीत भी हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैम हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम।
0: नमस्ते। अरे, आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी।
1: बिल्कुल, देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है, हो उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम,
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से। मैडम
0: स्वागत है आपका संतोष जी, कैसे हैं आप बताइए।
1: बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए, क्या करते हैं आप।
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ, साथ में वार्ताकार हूँ।
0: अच्छा, तो आप वार्ता लिखते हैं।
1: जी मैम।
0: तो अच्छा, मैं आपसे 2 या 3 लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए, अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए, और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है, कैसा खेल है इसके बारे में बताइए, तो क्या कहेंगे।
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियां हमारी प्रभावित करते हैं, खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है। और कबड्डी न केवल उत्साह की का प्रेरणा देता है बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, आपसे अगर हम पूछें तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए, किशोर हुए।
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था, और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे, तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती हैं और
0: हाँ,
1: खेलने का मन होता है।
0: लेकिन
1: जी मैम।
0: आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल्स में तो खैर गेम्स होते ही हैं, लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
1: जी मैम बिल्कुल, सिमट करके रह गए हम बच्चे, लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है, व्यक्तित्व होती है, वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदत डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए, अपने आसपास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाएं।
0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए, आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
1: बिल्कुल मैम, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म खलनायक का गाना है, ऐसी तेरी याद आती है।
0: क्या बात है, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैं अमल बसमटारी बात कर रहा है रंगापाड़ा सोनीतपुर आसाम से।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है, आज तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल सका है गर्मी से।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: आप कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे, आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
0: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना, आज आपका कॉल भी लग गया, आप खुश नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती बाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाते हैं और चाय का खेती है हमारा और चुपाड़े वगैरह लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है।
0: चाय का खेती भी करते हैं?
1: जी जी असम में तो चाय का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम लोग।
0: बिल्कुल असम की चाय, कौन सी चाय, खुशबूदार पत्तियाँ?
1: जी जी जी
0: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है, काश आपके पास होते तो आपके खेत पे ही बैठकर चाय बनाते और पी लेते।
1: नहीं हमारा चाय का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
0: अच्छा बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
1: और मैं बांसुरी बनाता है, बांसुरी बजाता है और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
0: अच्छा बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
1: बनाती भी है और बजाती भी है।
0: खेतों से मिलती है आपको
1: हाँ,
0: ये लकड़ी?
1: बम्बू से बनाता है।
0: अच्छा बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी है, तो बताइए। चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी, फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का जो चांद नजर आ गया ये वाला गाना सुनना है।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। चांद

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जादव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चालू है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है।
0: हाँ तो दीपक जी, और क्या करते हैं इसके अलावा, कोई और शौक है
1: जी मैं
0: आपके?
1: खेती किसानी करता हूँ खाली,
0: बस और कुछ
1: और
0: नहीं?
1: रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं। तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे एक गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
1: जी बिल्कुल, हम सुनते हैं ना रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री।
0: क्रिकेट की कमेंट्री। तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था
1: थोड़ा
0: आपका?
1: हम खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे, ये दोनों
0: अरे
1: खेलना पसंद है मुझे जरा।
0: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
1: खो खो।
0: खो खो, बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो,
1: जी
0: है ना? कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
1: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किससे बदले थे वो।
0: फिर बड़े होने के बाद सीधा खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
1: घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा, पढ़ाई की आपने,
1: पढ़ाई 12वीं तक की। बिल्कुल
0: अच्छी बात है। चलिए अभी
1: बिल्कुल
0: बताइए कौन सा
1: बिल्कुल।
0: गीत सुनवाएं आपको।
1: हमें तेरे नाम का गाना सुनना है मैडम, जो किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती है।
0: क्या बात है, कितना गहरा गीत सुनना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
2: ये

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222860288। हमारा दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: रंग तरंग
1: रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ताजमहल फिल्म की इस कव्वाली से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। साहिल के बोल, रोशन का संगीत।

0: पंकज उदास की आवाज में ये गजल अभी आपने सुनी। कलाम था कैसर उल जाफरी का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: मिताली मुखर्जी के स्वर में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। आइए अब सुनते हैं एक फिल्मी गीत जगजीत कौर की आवाज में। साहिल लुधियानवी की बोल है, खयाम का संगीत, फिल्म शगुन।

के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे सजदा एल्बम से ये गजल। ये है मीनू पुरुषोत्तम।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे थे पीनाज मसानी की आवाज में यह गजल। इसी के साथ आज का रंग तरंग प्रोग्राम खत्म होता है।
1: रंग

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
0: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
0: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की।
0: आज
2: हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
0: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
0: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं, लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
0: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
0: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
0: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
0: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहाँ से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया

0: कि अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
1: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है। खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
0: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
1: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
0: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
1: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
0: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
1: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अब ये एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गाँव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम, हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं।
4: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SDPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTWIP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे?
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
5: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: तारे जमीन पर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में प्रसून जोशी के बोल थे, शंकर एहसान लॉय का संगीत था। नमकीन फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

ليلى مجنون شيري فرهاد.

मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

जमाने को दिखाना है। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन की आवाज में। संगीत भी राहुल देव बर्मन का था और रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की। नमकीन फिल्म का गाना सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है।

संत भक्ति तटक बैगुन परा।

0: अम्मा सर पे टोकरी लिए सारा दिन गांव में घूमा करती है, गोबर जमा करती है, उपले थापती है, सुखाती है और जाके गांव में बेच आया करती है। बदलते हुए वक्तों से बड़ी शिकायत है उसे, गांव से तो क्या गईयों से भी शिकायत करती है।
1: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं इस कार्यक्रम के लिए। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाए। और हाँ, अगर हमने गाने चुने हैं और आपने, कई श्रोताओं ने वही वही गाना लिखा है, तो हम अपने गाने बदलकर आपके वाले गाने भी बजा सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम आप सुनेंगे ही, और ध्यान से जरा आज की इबारत पढ़ लीजिए, हम सुना देते हैं, सुन लीजिए। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है, फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा, क्या यही खता है? हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा, फिर कब मिलोगे, इस बात का वादा करो। एक बार जो सनम से दिल लगा, तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना, उसकी अदाएं मन मोहने लगीं, दिल को संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी न रह जाए, गले से लग जा, जिंदगी में शायद साथ इतना ही था। और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। वैसे बहुत सारे श्रोताओं की ओर से गाने सुझाए गए हैं, लेकिन हम कुछ खास शब्दों से पूछ रहे हैं कि कौन से गाने आपके जहन में आ रहे हैं। दिल शायर बन गया, इसका गाना बताइए, और बताइए कि दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा, और बताइए कि संभालने वाली जो बात है, यहाँ पर कहीं संभालने की बात आई है, उस पर कोई गाना बताइए। क्योंकि इन शब्दों पर कुछ गाने कम हैं, इसलिए मैंने यहाँ जानबूझ कर रखा है कि देखें आपको याद आता है कि नहीं। जैसे कि एक बार जो सनम से दिल लगा, यहाँ पर कौन सा गाना याद आया है। अब चलिए गीतों के माध्यम से एक कहानी भी सुनवा देते हैं। उस कहानी से जुड़ी हुई कौन सी कहानी आपको याद आती है, जरा बताइए। बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी आपने। सुनिए ये गाना और याद कीजिए कोई कहानी या फिर कोई

गाना या फिर कोई अपनी जिंदगी की कोई घटना जो यहाँ विविध भारती के फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं। तो बताइए कहानी, और आप भी कोई इबारत लिखकर भेज सकते हैं

हाँ, एक भी कहानी याद नहीं आई किसी को, न कोई फसाना याद आया और न ही कोई ख्वाब याद आया पुराना। हमने आपसे कहा कि कोई पुराना ख्वाब याद आया, लिखिए फटाफट। आपने किसी ने नहीं लिखा और न ही किसी ने ये लिखा कि हमने ये बचपन में ये कहानी सुनी थी या बड़े होकर कहानी अपने बच्चे को सुनाई। अरे एक लाइन में बता तो सकते थे कि फलाने लेखक की कहानी सुनाई थी, प्रेमचंद की, निराला की कविता सुनाई थी, कुछ तो लिख देते। नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आगे लिखिए। अब गानों से जुड़ी हुई बातें भी लिखते चलिए, सिर्फ अपनी टिप्पणी साझा करके बैठिए मत। आपकी टिप्पणी फेसबुक पेज पर सुरक्षित है, अगर हम पढ़कर नहीं भी सुनाते हैं तो आप वहां पर देख सकते हैं। हम सबकी टिप्पणी पढ़ रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों की टिप्पणियां हमारी आंखों से गुजर रही हैं और हम लाइक करते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल की खूबसूरती ये नहीं कि उसमें कितनी बातें हैं, बल्कि ये है कि उसमें कितने लोग बसे हैं। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, सीधे दिल से जुड़ते हैं और वही रिश्ते जीवन को खूबसूरत बना देते हैं। अगर दिल साफ हो तो छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगती हैं। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि मेरी सनम मेरी धर्म पत्नी है, जो मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मेरा तो दिल सिर्फ यही मानता है कि उसके अलावा कहीं और दिल नहीं लगाना है, और एक बार जो जन्म से दिल लगा लिया है तो मैंने समझ लिया कि दिल उसी का दीवाना हो गया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कहानी में एक लड़का होता है और बहुत सारे गाने, और एक श्रोता ने दीवाना लेके आया दिल तराना, दीवाने का नाम तो पूछो प्यार से। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गद्य मई इबारत की इबादत से निकले शब्दों में दिल मानता नहीं, घटनाएं भूलती नहीं, किसी से मुलाकात वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कोई हसीना जब रूठ जाती है, एक

ऐसी प्यारी बात, दिल वो जगह है जहाँ यादें महफूज रहती हैं, रिश्ते खिलते हैं और दुआएं जन्म लेती हैं। सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया, एक श्रोता ने लिखा है। वही वाह, गानों की तो लंबी फहरिस्त है। हमें लगता है अगर गानों के बोल हम बोलने लगेंगे तो ये आज का सुरीला सफर इतना लंबा हो जाएगा कि कभी खत्म ही नहीं होगा। एक टिप्पणी और पढ़ देते हैं फिर गाने की ओर चलते हैं। लेकिन भाई, हमने आपसे कहानी पूछी थी, जरा याद करके उस कहानी की एक लाइन तो लिख दीजिए और वो फसाना भी लिख दीजिए, जो फसाना बन गया, जो कहानी बन गई, और वो ख्वाब जो इस गाने में आपने सुना, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, पुराना ख्वाब। बहरहाल, एक श्रोता ने लिखा है, प्रेम प्रसंगों के पर्याय बनी इबारतों की श्रृंखला में आज की कड़ी प्रमाणित कर रही है कि जीवन के सफर में सिर्फ मोहब्बत ही एकमात्र विकल्प है जो रिश्तों को आबाद करने में सक्षम है, चाहे वो प्रेमी दिलों की हो या आपसे रिश्तों की, प्रेम ही शाश्वत है। बहुत पते की बात आपने लिखी है कि अगर इस दुनिया से प्रेम हटा दिया जाए तो दुनिया कैसी हो जाएगी, एकदम बेरंग, सूनी, उदास। प्रेम के सहारे ही तो रिश्ते बनते हैं, प्रेम के सहारे ही तो परिवार बनता है, समाज बनता है, ये सृष्टि की रचना ही प्रेम से हुई है। चलिए, अब छोटी सी मुलाकात, ये फिल्म का नाम है, सुनिए गाना और बताइए गीतकार का नाम।

छोटी सी मुलाकात फिल्म का गाना था। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थीं। अभी पिछले दिनों ये खबर आई थी कि गायिका सुमन कल्याणपुर नहीं रहीं, तो कितना दुख पहुंचा था, कितना अवसाद हुआ था हम सभी को जितने उनके चाहने वाले हैं। सचमुच एक अलग तरह की आवाज़ थी। अब हम आपकी टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल प्रेम की जगह मोबाइल ने ले ली है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मोबाइल में रहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत से सालों से मेरी तुझसे पहचान है आपके लिए। वैसे एक इस गाने में ये लाइन भी आती है, अनगिनत सालों से मेरी तुझसे पहचान है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि कब किससे पहचान हुई, कौन सी पहचान रिश्ते में बदल गई, ये हमारा सवाल है। कोई दोस्त मित्र प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी या भाई बहन का रिश्ता बन गया एक पहचान से। कई बार हम कहीं जाते हैं घूमने, कुछ अजनबी लोग मिलते हैं, वहाँ मुलाकात होती है तो कुछ रिश्ते बन जाते हैं। कई बार दोस्ती का रिश्ता बन जाता है, भाई बहन का रिश्ता बन जाता है, प्रेमी प्रेमिका का। तो आप ये भी बता सकते हैं अपनी यादें साझा करते हुए। एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में नानी जी सुनाती थी कहानी, जब हम गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे, खूब लंबी लंबी कहानियाँ। दादी और दादाजी बहुत प्यार करते थे। एक श्रोता ने लिखा है, नवी कक्षा में था जब मैं एनसीसी कैंप गया था, रोजाना ही जूनियर से कुछ न कुछ अफसर लोग हमसे पूछते रहते थे। लेकिन एक दिन कहानी किस्सों की बात हो रही थी तो सर ने पूछा, कल्चरल प्रोग्राम का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सुबह परेड पर 4 बजे आना है ग्राउंड पर, लेकिन मेरी नींद लग गई, बार बार सीटी बजाने के बाद भी नहीं उठ पाया। तो जो हमारे सीनियर थे उसने हमारे टेंट में आकर खूब पिटाई हुई और उसके डर से 2 दिन तक बीमार होने का मैं नाटक करता रहा। भाई नाटक क्यों किया, पिटाई भी ठीक नहीं थी लेकिन ना कुछ न कुछ तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक अनुशासन तो होना चाहिए छात्र जीवन में। एक श्रोता ने जानकारी दी है, एक छोटी सी मुलाकात 1967, आवाज मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और तुझे चाहा तुझे पूजा, ये तो गाने के बोल हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कोई माने या न माने, जो कल तक थे मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। बहुत सारे गानों की इबारत हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप इन्हीं इबारतों से आप कोई और पंक्ति रच सकते हैं, कोई कविता रच सकते हैं। हो सकता है आपकी रची कविता एक दिन आपको कवि बना दे, कहानीकार बना दे। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की कहानी, एक चिड़िया की कहानी जो अपने दाल की चोरी होने पर सभी से गुहार लगाती है और अंत में वो जीत जाती है। ये कहानी बाबूजी हम लोगों को सुनाया करते थे और मैं भी अपने बच्चों को सुनाती हूँ। क्या बात है भाई, गानों से देखिए कितनी सारी बातें याद आ गई। इसलिए गाने जब हम सुनते हैं तो गानों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत सारे शब्द हमें यादों में ले जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिर कब मिलोगे, ये गाना हमें बहुत पसंद है। और बहुत सारे श्रोताओं की ओर से फरमाइश आई है भरोसा फिल्म के गाने की, वो दिल कहाँ से लाऊं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो इबारत है उनमें वो शब्द होने चाहिए। तो देखा कि उनमें ये शब्द है तो चलिए वो गाना हम सुनवाते हैं। फिल्म है भरोसा। कलाकारों के नाम जरा बताइए कि पर्दे पर कौन गा रही हैं, कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना। वैसे पार्श्व गायिका है लता मंगेशकर। गीतकार संगीतकार का नाम आप बता सकते हैं अगर आप ये नहीं बता सकते कि कौन है अभिनेत्री। हीरो का नाम भी बताइए आप ही, जरा जल्दी टाइप कीजिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

भरोसा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे रवि का संगीत था। और हमने पूछा था पर्दे पर कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना, अभी तक श्रोताओं की ओर से जवाब नहीं मिला। आशा पारेख और गुरुदत्त हैं इस फिल्म में हीरो। देखिए साथ साथ पहेलियों के जवाब भी देते चलिए, क्योंकि इबारत के साथ साथ पहेलियां भी शामिल हैं कि हम आपसे पूछते हैं जो सवाल, आपके जवाब का रहता है हमें इंतज़ार। और हम बाकायदा कमेंट को न्यूएस्ट कर देखते हैं कि नए कमेंट कौन आ रहे हैं। बस टिप्पणी साझा करके आप बैठ गए रेडियो सुनने, नहीं जी, हम आपको बिल्कुल साथ में लगा के रखते हैं, संलग्न रहें आप, ये हमें अच्छा लगता है जानकर। बहरहाल एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ते हैं। कुछ मुलाकातें दिल में ऐसे ठहर जाती हैं जैसे माथे पर गिरी बारिश की पहली बूंद। हम उस पल को कभी भूल नहीं पाते, गाकर लिखकर रोकर हम उन लम्हों को फिर मिलने की चाह में याद करते रहते हैं। प्रेम की सारी मुलाकातें, सारी दूरियां, सारी शिकायतें, उसे एक लम्हे की याद में एक रुदन बन जाता है कि किसी को चाहना क्या एक सजा है। जिंदगी में चाहे कुछ लम्हों का साथ ही क्यों न हो, जाने वाले कभी नहीं जाते, वे रह जाते हैं कुछ अधूरी बातों में, मुलाकातों में और उन जगहों में जहां से कभी हम साथ गुजरे थे। और आपके दिल में, दिल वो जगह है जहां से कभी कोई जाता नहीं, हमेशा टिका रह जाता है। आप चाहें भी कि फला व्यक्ति दिल से चला जाए, लेकिन नहीं, मुमकिन नहीं होता है। तो अब चलिए यादों के गलियारों में चलते हैं। कौन सी यादें आपके जहन में दस्तक देती हैं ये बताइएगा आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, www.facebook.com/vbsmumbai ये टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब आ रहा है गाना उमर कैद फिल्म का, आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं इस बार सही कौन जवाब देता है। और यादों के गलियारों में जाकर कौन सी याद आई है एक लाइन में बताइए।

यादों के नाम बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम यहाँ नई जगह रहने आए तो एक प्यारी सखी मुझे मिली और हमने बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन हमारा साथ बहुत कम समय के लिए था, कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। एक श्रोता ने लिखा है कि हम साथ हैं आपके, काम बाद में करेंगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बहुत मार्मिक है गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि आशा आशा पारिक थी उस फिल्म में जिसका आपने पूछा था, भरोसा के लिए लिखा है। और एक श्रोता ने, क्या कई श्रोताओं ने लिखा है, दिल आशायर गम आज नगमा। हो सकता है इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये गाना मिल जाए। बस ये बताइएगा कि आपको अगला गाना कौन सा आ सकता है, जरा ये भी तो अंदाजा लगाइए। देखते हैं कि आप, वैसे गाने तो आपने बहुत सारे लिखे हैं जो हमारे पास हैं, जो मतलब हमारी और आपकी पसंद आज बहुत सारी मिल रही है। और ये जो वो दिल कहाँ से लाऊं, ये तो हमने आपकी पसंद पर ही सुनवाया। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही गंभीर गाना है वो दिल कहाँ से लाऊं, सुपर हिट सॉन्ग है। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म भरोसा के नायक और नायिका हैं गुरुदत्त, आशा पारिख। और भरोसा के गाने के लिए बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई है। एक श्रोता ने लिखा है 1970 में खुले ग्राउंड पर शाम को हम अपने मामा मामी के साथ ये फिल्म देखी थी। और एक श्रोता ने जानकारी दी है आशा पारेख, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि, फिल्म भरोसा। अब जरा कुछ और टिप्पणियां भी पढ़ दी जाए। एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत का फल मीठा होता है, पिताजी प्यासे कौवे की कहानी सुनाते थे, बाद में ये किताब में पढ़ा मैंने, मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्यासा कौवा वाली कहानी। और आप में से किस किस लोगों ने सुनी थी, किन किन लोगों ने, जरा बताइएगा। और जब प्यासा कौवा की कहानी सुनते थे तो आंखों के सामने क्या चित्र बनता था, वो भी बता सकते हैं। अब तो सामने आपके टेलीविजन पर देख लेते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख लेते हैं, लेकिन तब वो काल्पनिक चित्र बना करता था, और अब किताबों में चित्र बने बनाए आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मैंने अपने डायरी में लिखा था और गाती भी थी, ये 1990 की बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारे साथी की बात याद आई, अरे फिक्र क्यों करती है, मैं हूं ना, पर अफसोस वो

0: अब नहीं है। उफ। एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं वादा करना जितना आसान है उसे निभाना उतना ही मुश्किल। जब कोई वादा टूटता है तो सिर्फ एक बात अधूरी नहीं रहती बल्कि किसी का अटूट विश्वास कांच की तरह बिखर जाता है। वादे अगर कांच के हों तो टूट जाते हैं और अगर कच्चे धागे के हों तो छूट जाते हैं। क्या बात है भाई, ये वादे वाली बात आपने बेहतरीन लिखी है। अब कन्यादान फिल्म का ये गाना।
1: के चेहरे से हटा सकता नहीं।
0: हीरो हीरोइन का नाम आपको बताना है।
1: दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश

0: कन्यादान फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी की बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है आशा पारिक और शशि कपूर। जरा उन श्रोताओं के लिए जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर इस वक्त उपलब्ध नहीं है लेकिन रेडियो सुन रहे हैं, उनके लिए हम इबारत दोहरा देते हैं। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा क्या ये खता है, हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा फिर कब मिलोगे इस बात का वादा करो, एक बार जो सनम से दिल लगा तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी न रह जाए, गले से लग जा, जिंदगी में शायद साथ इतना ही था और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा, मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं। इस इबारत के साथ आप भी कोई इबारत लिख सकते हैं, हो सकता है आपके भीतर छुपी प्रतिभा परवान चढ़े और एक कवि हो जाएं आप, एक कहानीकार हो जाएं। बहरहाल ये जो दिल शायर बन गया इसको लेकर बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और एक गाना चुना है हमारे श्रोताओं ने गैम्बलर फिल्म का, दिल आज शायर है गम आज नगमा। तो चलिए यही गाना हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन जरा बताइए कौन है हीरो, हीरो का नाम बूझना है आपको।
1: गम आज नगमा है सब ये गजल है सनम,
0: गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।
1: गम

गैम्बलर फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया देव आनंद, और गीतकार संगीतकार का नाम कुछ श्रोताओं ने गलत भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बचपन में सबसे पहले कहानी सुनी थी चिड़िया और कौवे की। चिड़िया मोम से घर बनाती है, कौवा गोबर से घर बनाता है। बरसात में कौवा का गोबर का घर बह जाता है और भीगा कौवा चिड़िया के मोम के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन घर छोटा होता है और चिड़िया अपने छोटे चूजे को खाना खिलाने में व्यस्त होती है, इसलिए वो कौवा को अंदर आने नहीं देती। इस तरह की कहानियां बहुत प्रचलित है और हम सब ने अपने अपने बचपन में सुनी है। दरअसल वो जो कहानी वाला बचपन था कहीं गुम हो रहा है। अब कहानियों के बजाय मोबाइल वाला बचपन है। अब बहुत सारे मम्मी पापा को कहानियाँ याद ही नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि कोई कहानी वाली किताब बताओ ना जो हम पढ़कर सुना दें, या कोई वो बताओ, लिंक बताओ जहाँ हम उसे लगा दें तो सुनते सुनते सो जाए। भाई वो लिंक वाली कहानी का वो सुख नहीं है जो माँ अपने जबान से मॉड्यूलेट करके स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ सुनाती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि

0: लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर ये वक्त बहुत जालिम है, मिलता ही नहीं। वक्त को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कीजिए और लिख डालिए। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह, अपने जीवन साथी से प्यार करना, रिश्ते को पवित्र रखना है और बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आप अपनी बहुत अच्छी दोस्त याद आ गई इस प्रोग्राम के साथ और अपना प्यारा पुराना घर याद आ गया जहां मेरी दादी और दादा रहते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत के साथ मैंने भी कुछ लिखा है कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मशहूर शायर साहिल लुधियानवी की पंक्तियां प्रेमियों के दिलों की हालात बयां करती है कि हर प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं होती, प्रेम कहानी करवट लेती और उसमें विरह उत्पन्न हो जाता है। वो प्रेम जीवन भर नदी के दूसरे छोर की तरह साथ साथ चलता है, महसूस भी होता है किंतु ता उम्र पहले छोर से मिल नहीं पाता। भाई प्रेम के साथ दर्द तो जुड़ ही जाता है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो मीराबाई क्यों कहती कि जो मैं ऐसा जानती नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम किए दुख होए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गाना सुनते हैं। जरा बूझिए आप गीतकार का नाम और स्वर किसकी आवाज में ये गाना है, फिल्म बड़ा आदमी। और कोई नहीं बूझ पाया ये गाना, बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग गाने लिखे लेकिन ये गाना किसी ने नहीं लिखा। जरा सुनिए तो, और जरा संभालिए अपने दिल को और नोट कर लीजिएगा डायरी में ये गाना भी, जो लोग नियमित रूप से नोट करते हैं गाना।
1: संभालिए अदाएं आपकी के मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा, जरा संभाल।

बड़ा आदमी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था गीतकार का नाम और किसकी आवाज में गाना है। सभी श्रोताओं ने सही बताया, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, लेकिन गीतकार

एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत का फलसफा अजीब है। जब प्रेम अपने रंग में होता है तो साधारण से दिन भी उत्सव लगने लगते हैं। हर आहट में संगीत सुनाई देता है और हर ख्वाब में उम्मीदों के फूल खिल उठते हैं। लेकिन यही मोहब्बत जब अधूरी रह जाती है या बिछड़ने की दास्तान बनती है, तब वही फूल यादों की चुभन और अशकों की नमी में बदल जाते हैं। मोहब्बत इबादत भी है और इकरार भी है, मुकद्दर के इम्तिहान की तरह कठिन भी। शायद इसीलिए मोहब्बत का फलसफा अजीब होते हुए भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये इंसान को जीना, मुस्कुराना, इंतजार करना और कभी कभी टूटकर फिर से संभलना भी सिखा देता है और बहुत सहनशीलता भी सिखाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे चाचा जी बाहर गांव सर्विस करते थे, तो उन्होंने एक रेडियो लाया था। वो वापस सर्विस पे जाते थे तो रेडियो पूरे दिन मेरे पास रहता था। तो आज की इबारत बहुत सुंदर लग रही है और मैं वो दिन याद कर रहा हूँ। शुक्रिया इस बात के लिए। अब बहुत सारे श्रोताओं की ओर से इस गाने की फरमाइश आई है, फिल्म ये रात फिर ना आएगी, और जो इबारत है, इबारत में जो शब्द है, फिर मिलोगी कभी इस बात का वादा कर लो, तो इसमें कई शब्द आ जाते हैं। प्यार वाले शब्द भी आते हैं, इकरार वाले भाव भी आते हैं। तो सुनिए जरा ये गाना और हमें बताइए कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत और गीतकार का नाम। और आपको अपनी मुलाकात याद आती है किसी से तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। यादों के गलियारों में आप टहल रहे हैं इन गानों के माध्यम से, तो अपनी यादें साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। कभी किसी से आपने ये बात कही थी जो गाने में है? कभी किसी से पूछा फिर कब मिलोगी?

गीतकार एस एच बिहारी, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें फिल्म ये रात फिर ना आएगी। और श्रोताओं की ओर से जानकारी आई है, शर्मिला टैगोर, एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी से मेरी पहली मुलाकात मेरे जीवन का एक यादगार पल है, इस गाने के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बार उन्हें देखकर मन में अपनापन और सम्मान का भाव जागा। उनकी सादगी, मुस्कान और सहज स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो मुलाकात भले ही छोटी थी, लेकिन उसी ने हमारे रिश्ते की खूबसूरती की शुरुआत की। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल पार्क में गर्मी बहुत हो रही है, कभी कभी कोई नहीं आती है, जब चलने का समय होता है तब पूछती हैं कल आओगी ना, मिलोगी ना। भाई ये तो सहज सा सवाल है और ये इस गाने में ज़रूर है। और हमने पूछा था कि आपने कब किसको कहा था, पूछा था ये सवाल, तो बता सकते हैं आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता की टिप्पणी है कि लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह, अपने जीवन साथी से प्यार करना रिश्ते को पवित्र रखता है, बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यासा कौवा वाली कहानी अपनी पोती को सुना रही थी, जैसे कि मैं हिंदी में सुना रही थी। पूरी कहानी सुनाने के बाद बोलता है, दादी ये प्यासा कौवा नहीं था, ये तो थ्रस्टी क्रो था। तब मैंने उसे बताया कि तुम्हें प्यास लगती है तो बोलते हो ना कि मम्मी मुझे प्यास लगी है, तो हिंदी में प्यासा ही बोलते हैं। क्या बात है भाई। तो ठीक है, अगर वो थ्रस्टी क्रो के नाम से सुनता है तो भी उन्हें सुनाइए, धीरे धीरे वो प्यासा कौवा समझ जाएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि जरा संभालिए अदाएं आपकी, ये गाना साल 1961 का है, बड़ा आदमी फिल्म का, बड़ा ही खूबसूरत और सदाबहार रोमांटिक युगल गीत है। इस गाने को सुर कोकिला लता मंगेशकर और दिग्गज गायक महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज से सजाया था। और अभी अभी एक टिप्पणी आई है, लिखा है हमारे श्रोता ने कि अनेकों प्रेरणादायक कहानियां बच्चों को बचपन से आज तक धर्म पत्नी सुनाती रहती है और साथ में मैं भी सुन लेता हूँ, मैं स्वयं व्यस्तता के कारण सुना नहीं पाता हूँ। चलिए अच्छी बात है, ये सुनते और सुनाते रहिए। अब फिल्म दिल ने पुकारा, बताइए पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, मुकेश की आवाज है, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

और अब हम गाने के साथ थोड़ी सी बेवफाई करके ये गाना पूरा नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि एक गाना जो जरूरी है इबारत से जुड़ा हुआ और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, दिल ने पुकारा फिल्म का ये गीत था, उसके बाद छोटी सी मुलाकात ये वाला गाना सुनवाना है, लेकिन कुछ टिप्पणियां भी आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकातें टीस देती हैं, बात अधूरी रह गई, साथ छूट गया। कुछ एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पतिदेव मुझसे भोपाल मिलने आया करते थे, वो बात याद आ गई। एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह से 10:30 बजे तक विविध भारती हम सुनते हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के साथ हमारी दोस्त याद आ गई, दादी और दादा याद आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लाइन में कहानी वाली बात, बहुत मजा आया पढ़कर। अब ये प्रोग्राम का आखिरी

0: छोटी सी मुलाकात, बस आज की मुलाकात तो बस इतनी ही हो सकती है, यही फिल्म का नाम था। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। आज के प्रोग्राम का सफ़र बस इतना ही। सुरीला सफ़र का ये सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 32वीं कड़ी।

0: बारिसाल अधिवेशन को पहले ही दिन मिले इस उत्स्फूर्त प्रतिसाद से बौखलाए हुए अंग्रेज अधिकारी जमा हुए युवाओं और नेताओं पर निर्मम लाठी चार्ज करके भी नहीं रुके। अधिवेशन के लिए आए सभी लोगों के नेता और आदरणीय स्थान रखने वाले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ब्रिटिश अधिकारी कैंप ने गिरफ्तार कर लिया। उस दिन अदालत की छुट्टी होने के कारण उन्हें मजिस्ट्रेट के घर ले जाया गया। वहां सुरेंद्रनाथ ने सरकार की तानाशाही की कड़े शब्दों में निंदा की। इससे चिढ़कर मजिस्ट्रेट इमर्सन ने अदालत की अवमानना के लिए उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही जुलूस में भाग लेने के लिए 200 रुपये का जुर्माना और अलग से लगाया। वकील और सबूत पेश करने का अनुरोध भी इमर्सन ने ठुकरा दिया। सुरेंद्रनाथ ने तुरंत यह जुर्माना भरा और सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अधिवेशन स्थल की ओर दौड़ पड़े।
1: वंदे मातरम शब्द पर प्रतिबंध लगाना, सुरेंद्रनाथ की गिरफ्तारी, उन्हें हुआ जुर्माना, लाठी चार्ज, ये सब गैर कानूनी था। उस परिस्थिति में भी वंदे मातरम की विराट गूंज के साथ अधिवेशन की शुरुआत हुई। वंदे मातरम गायन से सभा शुरू हुई। अश्विनी कुमार दत्त और सुरेंद्रनाथ बनर्जी अभी सभा स्थल पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए निवारण चंद्र दास गुप्त ने भाषण दिया। अध्यक्ष अब्दुल रसूल ने कहा,
2: हिंदू हो मुसलमान हो, हम सबको मिलकर ये आजादी की लड़ाई लड़नी है। हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। देश की भलाई के लिए हम में से हर एक को ये काम करना ही चाहिए।
1: ये भाषण चल ही रहे थे कि सभा मंडप के बाहर वंदे मातरम के नारे और शोरगुल सुनाई देने लगा।

0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी का सभा मंडप में आगमन हुआ। उनके आने से सभा स्थल पर जुटे युवाओं में और भी उत्साह भर गया। लाठीचार्ज के घामों से लहूलुहान हुए शरीर का ख्याल भी कार्यकर्ताओं को उस उत्साह के जोश में नहीं रहा। स्वयं सुरेंद्रनाथ भी इस प्रतिसाद से भाव विभोर हो गए। मंच पर पहुंचने के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अत्यंत संयमित स्वर में मजिस्ट्रेट के बंगले पर घटी घटना सुनाई। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल का भी भाषण हुआ।
1: बारिसाल का युवा नेता चित्तरंजन गुहा बुरी तरह से घायल हो गया था। एक दिन पहले ही निकले जुलूस में आगे रहने वाला यह युवक वंदे मातरम के नारे लगा रहा था और बाकी युवाओं से मिले प्रतिसाद से चिढ़े अंग्रेज अधिकारी ने इस युवक की बेरहमी से पिटाई की। उस खून से लथपथ हालत में भी वो

0: वंदे मातरम के नारे लगाता ही रहा, इसलिए सिपाहियों ने उसे सामने के तालाब में फेंक दिया। साथियों के कारण उसकी जान बची। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि दिन दहाड़े सड़क पर वो भारत माता की जय जयकार कर रहा था। उस हालत में भी उसके पिता मनोरंजन गुहा उसे मंच पर लेकर आए, उनका भी भाषण हुआ।
1: दूसरे दिन 15 अप्रैल को सुबह फिर अधिवेशन शुरू हुआ। बिपिन चंद्रपाल युवाओं को मार्गदर्शन देने लगे। तभी बंग भंग विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संध्या के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय सभा स्थल पर आए। उन्हें देखकर तो प्रतिनिधियों ने फिर से वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। वंदे मातरम पूरे गीत का और मागो जाए जौन जीवन चले गीत का भी गायन हुआ।

0: अश्विनी कुमार दत्त ने सभा के सामने प्रस्ताव रखा,
1: जिस स्थान पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार किया, उस स्थान पर इस घटना की याद में एक स्तंभ बनाया जाए।
0: इस प्रस्ताव पर वहीं के वहीं अपने हाथों की अंगूठियां और पैसे देकर सदस्यों ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया।
2: उसी समय कैंप ने निषेधाज्ञा का आदेश दिखाकर सबसे वचन मांगा कि कोई भी प्रतिनिधि सभा समाप्त होने पर वंदे मातरम का घोष नहीं करेगा। बीते कल निर्ममता से लाठीचार्ज करने वाले कैंप को सभा स्थल पर देखकर उपस्थित जन समुदाय और भी क्रुद्ध हो गया। कैंप सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के पास गया और बोला,
3: लिसन, आई विल बी सेफ हियर विद यू। Being a government officer, I have to obey the government orders.
2: सरकारी अफसर होने के नाते मुझे सरकारी हुक्म मानना पड़ता है। सभा समाप्त होने पर यहाँ जुटे लोग वंदे मातरम के नारे नहीं लगाएंगे, ऐसा आश्वासन आप दें, तभी मैं ये सभा आगे चलने दूंगा, अन्यथा अभी ही इसी समय सभा बंद करनी पड़ेगी।
0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित सभी नेताओं ने ऐसी सहमति देने में असमर्थता जताई। कैंप ने सभाबंदी का आदेश दिया। उपस्थित जन समुदाय सभाबंदी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लोगों को समझाया,
1: कल बहुत बड़ा रक्तपात हुआ है, आज फिर उसकी पुनरावृत्ति किस लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन का हमारा उद्देश्य सफल हो गया है।
0: अध्यक्ष ने परिस्थिति पर विचार किया, अधिक विरोध से स्थिति बिगाड़ने की बजाय ये अधिवेशन सर्वसम्मति से बर्खास्त कर दिया, परंतु वंदे मातरम के संबंध में कोई भी वचन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्रोधित कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और भी जोर से वंदे मातरम का घोष करते रहे। खाली मंडप में रह गए केवल सशस्त्र सैनिक। अधिवेशन समाप्त होने पर बाहर निकल रहे लोगों से बिपिन चंद्र पाल ने कहा,
1: आज भले ही निषेधाज्ञा लागू की गई हो, फिर भी क्रांति की आग यहाँ भड़क चुकी है। आप सब अपने अपने गांव जाकर सभाओं का आयोजन करें और क्रांति की आग सब और फैला दें। आज का दिन शोक संतप्त होने का नहीं, बल्कि अत्यंत आनंद का दिन है।
2: अधिवेशन समाप्त कर घर जाने वाले प्रतिनिधियों का हर स्टेशन पर वंदे मातरम की घोषणाओं के साथ जोरदार स्वागत हो रहा था। बरिसाल से लौटते समय रेल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी से भगिनी निवेदिता ने कहा,
4: आपको जेल में बंद करने का सरकार का षड्यंत्र आपने विफल कर दिया है। अपने ही बुने जाल में ब्रिटिश सरकार फंस गई है। नैतिक विजय तो हमारी ही हुई है।
2: भगिनी निवेदिता की यह बात आगे सच साबित हुई।

परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 32वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग, समृद्धि नाइक, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: पदम।
1: आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत, हम बोल रहे हैं विविध भारती से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है। अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो

0: एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: तीसरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज में।

मुकेश की आवाज में ये था तीसरी कसम फिल्म का गाना, रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए अब सुने रोशन की बनाई तर्ज पर लता मंगेशकर का गाया गाना, रचना है साहिल लुधियानवी की फिल्म बहू बेगम।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमें। दिल दिया दर्द लिया फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। लिखा था इसे शकील बदायूनी ने, धुन बनाई थी नौशाद ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार।

आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। राजा मेहदी अली खां के बोलते फिल्म थी वो कौन थी। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।
2: आहा,

0: दोस्तों, प्रकृति नियमबद्ध है, जैसे सूर्योदय होना, फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण के पहले चुपके से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है, जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र हैं। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई घरों में खेलकूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां अपनी जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को, इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूं मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, सरिता कुमारी।
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी, अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए, क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस ये घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। आप बताइए, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें।
1: इतना आज बहुत खुश हूँ, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से तगाई कर रही थी।
0: जी, हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए, आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी, प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो गाना
0: जी,
1: ही है।
0: जी, तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: जी,
0: जी
1: मैं चांदनी जी बोल रही हूँ, छत्तीसगढ़
0: चांदनी जी,
1: बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात है
1: जी
0: चांदनी जी,
1: जी
0: क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं, गृहिणी हैं, क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए
1: जी मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी, क्या
1: और
0: बात है?
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है।
0: देखिए, रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना
1: जी
0: चांदनी
1: जी
0: जी? अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी, मेरे 3 बच्चे हैं मैम,
0: अच्छा,
1: दो बेटे हैं मैम, एक लड़की है, एक
0: अच्छा,
1: गुड़िया
0: क्या
1: है
0: बात
1: मेरी।
0: है?
1: जी, मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, तो दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक बैंक में है बेटा।
0: अच्छा, तो बड़े बच्चे हैं, तो हम आपको यादों की गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहां जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी, तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे तो कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो, तो हम बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा। हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे, और खाकी कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी कवर आते थे ना पहले,
0: जी
1: खाकी
0: जी
1: कवर
0: जी
1: उसको चढ़ाते थे, फिर उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे, उसके बाद फिर और बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए, वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया मम्मी हमको भी लगा के दीजिए, तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि
0: क्या बात,
1: बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे, और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्ची अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना है।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी। आज बताइए, आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ, फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान, गाने के बोल है
0: मैं ना
1: मैं ना भूलूंगी।
0: भूलूंगी। तो चलिए सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली।
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम धन्नो जय सवाल बोल रहे हैं झांसी से। आज
0: झांसी से धन्नो जायसवाल।
1: आप
0: धन्नो जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे हमारे
0: जी
1: 3 बच्चे हैं।
0: जी तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और दो लड़कियां हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी, जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना हो, या फिर उनके झगड़े होते
1: सब
0: थे,
1: हम ही करते थे, मैडम सब हम करते थे। हाँ
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के और उनका पालन पोषण किया है, और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है, जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का, चलिए
1: हाँ,
0: आप ही
1: तुम
0: की,
1: बिन तुम बिन
0: जी तो तुम बिन फिल्म का आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: आपकी मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी। जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप
0: जी
1: बताइए।
0: जी हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए, क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण गृहिणी हूँ, पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
0: जी, तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगी अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ,
0: जी
1: मैं
0: सुनाइए।
1: आपको एक अपनी रचना सुनाती हूँ।
0: जी
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई। जब से तुमको ना खुदा माना है, हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, गुफा में ढूंढती नहीं ठिकाना है। ये भैया दुकान कविता है।
0: बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: सरस्वती चंद्र का
0: जी
1: छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: जी बेहद सुंदर गीत है। तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती कैला सुतार बात कर रही हूँ, बीड जिले से। हाँ
0: बीड़ जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा चल रहा है जीवन? क्या चल रहा है इन दिनों में, बताइए।
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं
1: कुछ
0: आप?
1: मैं कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मैसेज हूँ। और इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ, फाटक चौक में। हाँ,
0: जी
1: उनकी रसवंती शॉप है, रसवंती
0: जी
1: गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ
0: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन दिनों
1: बहुत
0: तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है।
1: बहुत
0: और
1: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
0: जी बिल्कुल, तो आप अपने
1: हाँ
0: पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
1: हाँ उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप होके भी बहुत काम करते हैं। स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
0: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना। मेहनत तो सभी लोग करते
1: हाँ
0: हैं, सभी
1: यस,
0: का एक
1: हाँ
0: अपना
1: हाँ
0: अपना
1: यस,
0: अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है। मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना
1: बहुत बहुत बहुत।
0: जी। तो घर में आपके बच्चे भी हैं?
1: हाँ, मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है। और मिस्टर जो है तो काम भी कर रहे थे यहाँ पे।
0: जी
1: हाँ
0: जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे
1: हाँ
0: थे तो गर्मी की
1: हाँ
0: छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं है ना, तो उन दिनों
1: हाँ
0: में बच्चों के कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो
1: यस,
0: बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में?
1: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल। और छुट्टों में भी कैसा करते थे, पढ़ाई नहीं से ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है तो फिर ये बुक लो, बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, जिसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू तो फिर कवर लगाने का, नए बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी।

0: करते थे।
1: जी बिल्कुल। और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे
0: ओ
1: करते
0: बहुत बहुत
1: थे?
0: हाँ, ये शाम भी करते थे ना, उधर की पत्ता इधर इधर का उधर ऐसा करके हम
1: हाँ
0: उसको ऐसे कुछ खेल बनाते थे।
1: हाँ ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ साथ आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना।
0: बहुत बहुत मैम,
1: जी, आपसे बात करके हमें
0: बहुत कुछ।
1: बहुत अच्छा लगा। वैजयंती जी, आज
0: हाँ
1: बताइए आप
0: हाँ
1: कौन सा
0: मुझे
1: गीत
0: जिंदगी
1: सुनना चाहती हैं?
0: हर कदम एक नई जंग है, उनको पसंद
1: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है इसलिए
0: है।
1: आप सुनना चाहती हैं।
0: बहुत पसंद है, यस।
1: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है
1: जी
0: ना?
1: जी बिल्कुल
0: जी, तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है। घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप। और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी, मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है। बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है, वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए,
0: जी
1: तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी,
0: जी
1: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
0: जी, हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
1: जी जी मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ
0: जी
1: और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी, आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी,
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक।
1: जी,
0: जी
1: ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे सी मजबूत, उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो शहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूल्हा, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं सी खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार, अगली कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए आप आपके पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा ही गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो मैडम,
0: जी, किनसे बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजरे बोल रही हूँ मैडम। मैं नागपुर से। मैं
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में,
0: जी
1: गाने का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं।
0: जी तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम, मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, और घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की। पापड़
0: जी, मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम करती हैं।
1: बनाते, ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर पे बनाते,
0: जी, तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: किलो
0: हैं?
1: से। ओ, घर के जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा है, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं
0: अच्छा।
1: जॉब वाले, तो उन लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने। हाँ
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेशा, ये गाना सुनना है
0: बिल्कुल,
1: अग्निपट 2 का।
0: आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर
1: हाँ
0: रही हैं
1: जी,
0: आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से। ये
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: छोटा टाउन है, जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहां पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली, तो मैं
0: जी,
1: वहीं पे रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा
1: हाँ
0: में
1: जी,
0: आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो
1: जी,
0: बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं, कोटपुतली में करती हैं, किस तरह से हैं बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली कोटपुतली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी
1: हाँ
0: आप अभी यहाँ पे, आपका ट्रांसफर हुआ है किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं,
0: अरे वाह।
1: तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई।
0: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी, बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब आप यहाँ पर नए शहर में हैं? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है, या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए, इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहां पे कोई परेशानी नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंट को किस तरह से आप, शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम कर रहे हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना
0: जी
1: होगा, तो
0: बिल्कुल जी,
1: इसीलिए जड़ से उपचार करने के लिए हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
0: जी, तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
1: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे, वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर
0: जी
1: बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा, अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
0: जी बिल्कुल, तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपने काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो चलिए आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते। ये तो बताइए, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता उइके। तो
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी।
0: जी, सिकंदरा से। तो ये इसके आसपास कौन सा बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है और
0: अच्छा
1: बालाघाट है।
0: जी, बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी
1: हाँ,
0: है।
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी, हाँ जी।
0: जी, तो सुनीता जी हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: हाँ, देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा हैं, मेरे पति हैं, दो बच्चे हैं देवर
0: जी,
1: के, एक है, एक मेरा है। हाँ
0: अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके हैं अब?
1: नहीं, छोटे हैं दीदी, एक है अभी,

0: 9 साल का है, अभी ये मतलब 14 तारीख को हो जाएगा 4 साल का बर्थडे है उनका।
1: जी, तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे।
0: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
1: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
0: हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं पूरा दिन, तो हाँ उनको भी कभी कभी समय मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ।
1: जी, तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
0: हाँ दीदी, हाँ
1: जी,
0: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
1: हाँ बिल्कुल, यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे
0: हाँ
1: गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी, आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया। आप ये बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुना था, मेरे घर आई एक नन्ही परी।
1: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालगाना का इंदौर से मैडम
0: जी। ये
1: जी। एक
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ। गाने के बोले दिल का सुनना सा तारा ना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है।
0: जी तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियो, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबां। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02240024662, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02228670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थाम कर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि। बहुत जगह है मेरे कमरे में, यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने। कोई जरूरत नहीं है, आप अंदर रखवाती हो या नहीं? नहीं। आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम पहले नाश्ता करो। नहीं। अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो। पक्का ना? हाँ पक्का। अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदल कर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले।

0: बातें करने लगे। तुम उसे बता क्यों नहीं देती?
1: क्या बताऊं?
0: यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला।
1: प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है, लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती।
0: पर बताना तो पड़ेगा ना?
1: पता नहीं।
0: उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है,
1: तुम परेशान मत हो पल्लू।
0: प्रेम। ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है,
1: देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो।
0: मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूंगा।
1: तुम जानते हो मेरी हालत।
0: तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा।
1: मुझे डर लगता है प्रेम।
0: क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी, लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए।
1: हाँ, पर अंजलि की बात और है,
0: तुम मेरी बात तो करवाओ।
1: प्रेम, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे।
0: अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा।
1: तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी।
0: ओफो, लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा।
1: पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए।
0: एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती, लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू। लव यू टू, प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों, दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे, आखिर क्या कहें। मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया, अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए और ये भी कि आज अरविंद क्या पहनकर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा

दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो क्या मैं कर दूं मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ मैं कर लूंगी। अच्छा, बुआ ने ज्यादा जोर न देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी, किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध लो बेटा। बुआ मुझे खुले बाल पसंद है। अच्छा बाबा जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जवां दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नजर अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और? अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी। और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना मिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले, लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई। तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया, लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो, नहीं तो खूबसूरत हो तुम। वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो, बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे, पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई, लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी। लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूं कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था, लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं, कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदाबांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी। वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए।

अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ना उसे। ये बता, अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना इसलिए ऐसा कह रही है, एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहाँ वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को 2 दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। 2 दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है। और ये सोचकर वो भी परेशान

हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। परेशान हो क्या? हाँ, थोड़ा परेशान हूँ। बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा। नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। अरे हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई ना कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उसे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती, लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी। लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहां तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहां अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

0: अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? मिलकर बताती हूँ। अरे बताना। नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा। पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे, अंजलि झुंझला उठी। अरविंद के बारे में है। अरविंद? हाँ, क्या हुआ अरविंद को? कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली। अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में? आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ भी। मैं आऊँ यूनिवर्सिटी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था। हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ ही नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना? पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन कर ही लोगी। पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।
1: तेरी दुनिया से हो के मजबूर चला

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरकवान रब्बही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश और स्वस्थ होंगे। साथ ही कभी बारिश तो कभी इस धूप के मौसम में खुद का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का खास ध्यान दे रहे होंगे, जो कि जरूरी भी है। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और साथ ही सुनते रहिए अपना वन ऑफ द डेली यूथ प्रोग्राम युवाणी, जो लेकर हाजिर है आपके रेडियो हम सफर एकता। तो साथियों, हर बार की तरह आज भी हम बातें करेंगे ढेर सारी खास विषय से जुड़ी, साथ में सुनेंगे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स पे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज दिन है शुक्रवार और शुक्रवार को होता है हमारा खास क्रम रोजगार सूचना, जिसमें मैं आपको दूंगी इस हफ्ते रोजगार से जुड़ी जानकारी, जिसके लिए आप जुड़े रहिए अपनी रेडियो हम सफर के साथ। दोस्तों, जरा एक पल के लिए आप सभी अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि सुबह का समय है, कुछ बच्चे

बच्चे स्कूल की ओर जा रहे हैं। उनके कंधों पर किताबों से भरा बस्ता है, आंखों में सपने हैं और चेहरे पर मुस्कान। लेकिन उसी समय कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके कंधों पर बस्ता नहीं बल्कि काम का बोझ है। कोई होटल में बर्तन साफ कर रहा है, कोई चाय की दुकान पर ग्राहकों को चाय पहुंचा रहा है, तो कोई फैक्ट्री में घंटों मेहनत कर रहा है। दो तरह के बच्चों का बचपन लेकिन अलग अलग बीत रहा है। और क्या इस तरीके से हमारा देश विकास करेगा? सोचिए, क्या यही बचपन है? फ्रेंड्स, बचपन जीवन का वो सुनहरा दौर होता है जिसमें बच्चे खेलते हैं, सीखते हैं, सपने देखते हैं और अपने भविष्य की नींव रखते हैं। लेकिन जब ये बचपन मजदूरी के बोझ तले दब जाता है तो केवल एक बच्चे का ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देश का भविष्य प्रभावित होता है। साथियों, हम हमेशा होटलों या दुकानों, फैक्ट्री में बाल मजदूर देखते हैं, सड़क पर सिग्नल पर काम करते बच्चे देखते हैं, जबकि हम जानते हैं बाल मजदूरी एक अपराध है। जो बाल मजदूरी करवाता है वो तो अपराधी की श्रेणी में आता ही है, लेकिन जो ये सब देखकर भी विरोध नहीं करता वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। दोस्तों, और इसी गंभीर समस्या से लोगों को रूबरू कराने के लिए और जागरूक करने के लिए हर साल आज के दिन 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार दिलाना है। फ्रेंड्स, बाल श्रम केवल आर्थिक समस्या ही नहीं, एक सामाजिक चुनौती भी है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और जागरूकता की कमी इसके प्रमुख कारण हैं। कई बार परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बच्चों को कम उम्र में ही काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। साथियों, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि बाल श्रम गरीबों का समाधान नहीं बल्कि गरीबी को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने वाला चक्र है। जब कोई बच्चा स्कूल छोड़कर मजदूरी करता है तो वह शिक्षा से वंचित रह जाता है। शिक्षा के अभाव से उसे भविष्य में अच्छे अवसर नहीं मिल पाते हैं और वह आर्थिक रूप से कमजोर ही होता जाता है। इस प्रकार बाल श्रम दुष्चक्र चलता रहता है। फ्रेंड्स, हमारे देश में भी बाल श्रम को रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी प्रकार का रोजगार कराना कानूनी अपराध है। इसके बावजूद कई स्थानों पर आज भी बच्चे मजदूरी करते दिखाई देते हैं, क्योंकि यह सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी है। यदि हमें किसी दुकान, ढाबे, होटल, फैक्ट्री या अन्य स्थान पर कोई बच्चा काम करता दिखाई दे तो हमें इसे सामान्य बात समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें इसकी शिकायत कानूनी तौर पर करनी चाहिए। दोस्तों, हर बच्चे के हाथ में औजार नहीं किताब होनी चाहिए। उनकी जगह कारखानों में नहीं बल्कि विद्यालय में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश और विश्व का भविष्य है। जितनी तेज चमकेंगे देश और विश्व का भविष्य भी उतनी तेज आगे बढ़ेगा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ हमारे इस विषय पर बातें बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति होती है। युवाओं के सपने, उनका उत्साह, उनकी ऊर्जा और उनकी सोच ही देश के वर्तमान को मजबूत और भविष्य को उज्जवल बनाती है। इसलिए जब भी राष्ट्र निर्माण की बात आती है, युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, इसी से जुड़ी चलिए आज हम एक वार्ता सुन लेते हैं। वार्ता का विषय है राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान। वार्ताकार है आनंद कुमार।
4: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद कुमार और मैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का हमारा विषय है राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भागीदारी। दोस्तों, युवा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होते हैं। उनकी ऊर्जा, नवाचार और साहस से देश का भविष्य तय होता है। शिक्षा, तकनीकी, राजनीति और समाज सुधार जैसे क्षेत्रों में उनकी भागीदारी देश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। दोस्तों, राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे समाज और संस्कृति कर्तव्य निष्ठा से युवाओं को देश की मजबूती प्रदान करते हैं। दोस्तों, यदि अपनी जिम्मेदारी समझ लें, सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयास करते रहें, तो राष्ट्र और तेजी से विकास की प्रगति में कर सकेगा। दोस्तों, युवा किसी भी राष्ट्र की आत्मा होते हैं। उनकी ऊर्जा, विचारशीलता और नवचार क्षमता देश ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैलती है, प्रगति का आधार बनती है। दोस्तों, एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका केवल रोजगार तक सीमित नहीं होती,

0: युवाओं की ऊर्जा तभी राष्ट्र निर्माण में सहायक होगी जब उन्हें सही दिशा मिले। जी हाँ दोस्तों, यदि युवा अपनी क्षमता और सार्थक को पहचाने और उसे समाज के हित में लगाए तो वो एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत और विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव होगा, जहाँ हर नागरिक को समान अवसर और अधिकार मिलेंगे। दोस्तों, युवा की ऊर्जा, जोश, नवीन सोच और कार्य करने की क्षमता राष्ट्र प्रगति में अहम भूमिका निभाती है। जब कोई देश विकास की ओर अग्रसर होता है तो उसके युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। वे केवल समाज के भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान में भी निर्माता होते हैं। दोस्तों, राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी विकास, सामाजिक सुधार और राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, युवा किसी भी राष्ट्र देश की शक्ति होते हैं। जब युवा अपने कर्तव्यों को समझते हैं और देश हित में योगदान देते हैं तो देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता है। इतिहास गवाह है, जब किसी भी समाज या देश के बड़े बदलाव युवाओं की भागीदारी से ही संभव हुआ है। आज के दौर में शिक्षा, तकनीकी, राजनीति, समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, देश उतनी तेजी से विकास करेगा। लेकिन इसके लिए जरूरत है युवाओं को अपनी जिम्मेदारियों को समझने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। दोस्तों, युवा समाज एक सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। समाज में व्याप्त कुरीतियों और भेदभाव को समाप्त करने में उनकी अहम भूमिका होती है। दोस्तों, साथ ही साथ स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और डिजिटल इंडिया जैसे योजनाओं से भी जुड़ सकते हैं, देश में सुधार ला सकते हैं। दोस्तों, एक मजबूत लोकतांत्रिक के लिए जागरूक और सक्रिय युवा की आवश्यकता होते हैं। दोस्तों, युवा जब राजनीति में आते हैं तो वे पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को बढ़ावा देते हैं और भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और न्याय संगत समाज में स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्र निर्माण में युवा की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि उन्हें उचित शिक्षा, सही मार्गदर्शन और अवसर दिए जाएं, तो वे देश के लिए विकास अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, युवा अपने कर्तव्यों का राष्ट्र निर्माण में पालन कर सकते हैं। दोस्तों, हमें अपने युवाओं को प्रेरित करना होगा कि वे अपने सपने को सफल करने के लिए भारत को एक समृद्ध और शक्तिशाली देश बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाएं। दोस्तों, युवाओं के सामने बेरोजगारी, अशिक्षा, असमानता, करियर को लेकर के असमंजस, मानसिक तनाव और सही मार्गदर्शन की कमी है। इसके अलावा नशे की लत और डिजिटल व्यवसायी ने भी युवाओं को प्रभावित किया है। अगर इन्हें सही समय पर अवसर और मार्गदर्शन मिले तो वे देश को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। धन्यवाद।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, तो हमने जाना वार्ता के द्वारा राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान। वार्ताकार थे आनंद कुमार, जो जिन पर बातें बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं फिर से म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
4: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में मौजूद छोटा सा मोबाइल फ़ोन आपकी दुनिया बदल सकता है? आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। विशेष रूप से युवाओं के जीवन पर इसका गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, लेकिन क्या सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन है?

नहीं, अगर सही दिशा में और सही सोच के साथ इसका उपयोग किया जाए तो सोशल मीडिया युवाओं के लिए अवसरों, ज्ञान और सफलता का एक विशाल मंच बन सकता है। साथियों, आज का युवा सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकता है। शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कला में प्राप्त साहित्य, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी अनगिनत जानकारियाँ एक बस एक क्लिक की दूरी से पा जान सकता है। अनेक युवा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, वेबिनार और शैक्षिक वीडियो के माध्यम से नए कौशल सीख रहे हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना रहे हैं। इतना ही नहीं, युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का भी अवसर देता है। सामाजिक जागरूकता फैलाने में भी सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसका यूज सही दिशा में करेंगे तभी इसका हमें फायदा मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस विषय पर बातें यहीं तक। अब चलिए चलते हैं अपने आज के खास क्रम की ओर, जो है रोजगार सूचना। जिसमें हमारे रोजगार से जुड़ी जानकारी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC ने नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट का आवेदन जारी किया है। आवेदन 25 मई से शुरू हो चुके हैं और इसकी आखिरी तिथि 26 जून तक है। बाकी की जानकारी आपको इसकी वेबसाइट mppsc.mp.government.in पर मिल जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्रम यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, इस भागदौड़ वाली लाइफ में थोड़ा सा समय अपने स्वास्थ्य को भी जरूर दीजिए, योगा कीजिए, अपने साथ समय बिताइए। और इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और अपनी रेडियो फ्रेंड को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम घरनी।

सब बहिन लोगन के राम राम। और बताओ बहिन लोगन, का हाल समाचार बा आप सब लोगन का? उम्मीद बा कि आप सब लोगन स्वस्थ और मस्त हुई हैं। बहिन, हम लोगन दिन भर कितना मेहनत करके अपन चार पैसा का व्यवस्था बनावल जाला कि अपन परिवार खुशहाल रहे, बच्चन पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। पर कहीं कहीं तो देखा, परिवार लंबा हुए के कारण परिवार के प्रति जो अपन जिम्मेदारी देख के बच्चन जवन की 18 बरिस से कम का हो ना, वो रोजी रोटी के चक्कर में फंस जालन। ऐसा अवस्था में देखा सरकार द्वारा दंड का भी व्यवस्था कैल गई है। आज देखा 12 जून यानी कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनावल जाता। एकर शुरुआत देखा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने 2002 में शुरू कैल गई, और एके शुरू करे का उद्देश्य रहल 18 बरिस से कम उम्र के बचपन के काम करावे का कुप्रथा के खत्म करल। हर बचवा स्कूल जाए, खेले कूदे और अपन बचपन जिए। आप लोगन के पता है बहिन लोगन, अगर केहू भी 18 बरिस का छोट बचवा या बच्चन से काम करावत पकड़ाता तो सरकार 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना और 6 महीना से 2 बरस तक का जेल हो सकेला। बचपन से काम करवावे पर बचपन का बचपन खत्म हो जाला, सेहत खराब हो जाला, पढ़ाई भी अपन नुकसान होला, साथ में शारीरिक शोषण भी होत रहला और अपन देश का भी नुकसान होला। काहे कि कहल जाला ना कि बचपन अपन देश का भविष्य निर्धारित कैल गेल है बचपन में ही, और एक खातिर हर जगह रैली जुलूस निकालल जाला। स्कूल में शपथ भी लेवल जाला कि ए पर रोक लगावल जाए, छापेमारी भी जगह जगह पड़ाला बच्चों के अपन बाल श्रम में रोके खातिर, साथ में मीडिया अभियान भी चलावल जाला। और इतने नहीं, साथ में सरकारी कार्यक्रम जैसे बाल श्रम मुक्त गांव घोषित करल, माता पिता के राशन छात्रवृत्ति का देना, ये सब बाल श्रम के बंद करे का उद्देश्य है। अब देखें अपने कार्यक्रम में हम लोगों जब आज जुटल गई बा और जानकारी ना हो तो देखा बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकला, लेकिन अपने कार्यक्रम में जुटे के बाद पहला मन फिर हम लोगन करल जाए एक भोजपुरी फिल्म के गीत के साथ, फिर आगे बात बत कही होत रही।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
4: वही लोगन देखे, हम लोगन गीत सुनल गए, गीत सुन के मन हो गए एकदम फरिच, और ओके संगे संगे संदेश भी सुनल गए। अब हमें अपन जानकारी के क्रम के आगे बढ़ावल जाए। हम लोगन देखे पहले बात करत रहने कि विश्व बाल श्रम उन्मूलन के बारे में, तो वही लोगन देखे जब हम लोगन खरीदारी करी लेना तो देखा अपन कालीन हो गए, चाहे बीड़ी चूड़ी पटाखा, इस सब पर जो लेबर चाइल्ड मार्क होला ओके देख के ही सामान खरीदे के चाहिए, और अगर तनिको अपन शक हो तो सामान वहाँ से मत खरीदे, और घर में देखा नौकर ना ही रखे के चाहिए छोट बच्चों के। अगर कहीं आप लोगों देखत हमें काम करत तो 1098 पर तुरंत फोन करके शिकायत दर्ज करा सकेलन। आवे आज जानकारी भी यही विषय पर, यानी कि निःशुल्क शिक्षा और जागरूकता से ही बाल श्रम उन्मूलन विषय पर अचला पांडे जी, जवन की एक उप श्रम आयुक्त हैं अपन मिर्जापुर क्षेत्र से, और उनसे जानकारी लेते हैं अपन सुरसरी द्विवेदी जी। तो बिना देर के लिए आवे उनकर जानकारी सुनल जाए।
5: साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर घर में सोचा जाता है, मगर उसके सोचने का जो तरीका है वो बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे हर आंगन में बच्चों के उत्तम भविष्य की कल्पना करते हुए एक अभिभावक उन्हें अच्छा विद्यालय, अच्छे पोशाक और अच्छे आहार देने का प्रयास करता है, पर दुर्भाग्यवश हम कभी कभी इन्हीं बच्चों को किसी ऐसे क्षेत्र में देखते हैं, जैसे किसी पटाखे की कंपनी में काम करते हुए, कारखानों में हाथों में उपकरण लिए हुए, या सड़कों के किनारे कटोरा लिए हुए। यह हमारे देश के लिए अत्यंत विचार का विषय है, और हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मना रहा है। एक समाज के रूप में हमारे लिए यह दिन सिर्फ एक तारीख है या आत्मनिरीक्षण का समय। आज हमारे साथ इस अहम विषय पर चर्चा करने के लिए श्रीमती अचला पांडे उप श्रमायुक्त मिर्जापुर क्षेत्र से साथ में हैं। तो मैम नमस्कार।
6: नमस्कार मैम।
5: आज बच्चे हर घर के लिए एक चुनौती बने हैं कि कैसे उन्हें एक उत्तम भविष्य, अच्छा तगमा, अच्छा पद दिया जाए, कैसे उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। वहीं एक तरफ यह भी चुनौती है कि जो बच्चे ऐसी जगह काम कर रहे हैं जो एक अपराध के क्षेत्र में आते हैं, तो आपकी नजर में आज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
6: मैं कहना चाहूंगी कि आज जो बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून हम मनाते हैं, वो एक समाज के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, अपितु आत्मनिरीक्षण एवं आत्ममंथन का समय है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का उद्देश्य समाज को संदेश देना है कि हर बच्चे का अधिकार शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक बचपन है। बच्चों का स्थान विद्यालय में है, कार्यस्थल पर नहीं। जैसे कि हमारा जो जनपद है, जनपद सोनभद्र, उसकी चुनौतियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम सब जानते हैं जनपद सोनभद्र की भौगोलिक परिस्थितियां विशेष हैं। ये एक बड़ा आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्र है जहां कई गांव दूर दराज और दुर्गम स्थानों पर स्थित हैं। जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण अनेकों स्थान पर विद्यालय की दूरी अधिक है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण परिवारों को पलायन भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कई बार पलायन के दौरान बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और बाल श्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमारी प्राथमिकता केवल बाल श्रम मुक्त करना ही नहीं है, बल्कि उनका शैक्षणिक पुनर्वासन तथा परिवारों का आर्थिक पुनर्वासन सुनिश्चित करना भी है, ताकि बच्चे पुनः श्रम में ना लौट पाए।
5: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन देना हमारा कर्तव्य है और उनका अधिकार है। हमारे कानून जैसे बाल श्रम निषेध कानून या शिक्षा का अधिकार बहुत मजबूत है, लेकिन ग्रामीण या अर्ध शहरी इलाकों में, जैसा कि आपने बताया हमारे सोनभद्र के परिप्रेक्ष्य में, इसे क्रियान्वयन में हमसे कहाँ चूक हो जाती है?
6: कानून सशक्त है, लेकिन कई बार जागरूकता की कमी, मजबूरियां और दूरस्थ क्षेत्रों तक सूचना का समय पर ना पहुंच पाना चुनौतियां पैदा करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग बच्चों से घरेलू या आर्थिक कार्य कराना सामान्य बात समझते हैं।
5: जी,
6: कानून के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी भागीदारी सामूहिक चेतना से जुड़ी हुई है। जब तक समाज इसको एक अभिशाप नहीं समझेगा, तब तक बाल श्रम मुक्त कराना हमारे लिए कठिन होगा। इसलिए प्रशासन केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान, विद्यालयों के मध्य संवाद, पंचायतों की भागीदारी तथा विभिन्न समितियों की नियमित बैठकों के माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन के लिए लगातार प्रयासरत है।
5: बिल्कुल सही बात कही आपने कि जमीनी हकीकत और कागजी दावों के बीच खाई को पाटने के लिए हर अभिभावक को जागरूक होना जरूरी है। कहते हैं बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, लेकिन जब हम उन्हीं बच्चों को दुकानों या ढाबों पर काम करते देखते हैं तो निश्चित रूप से एक टीस उठती है। तो अधिक से अधिक हमारे वह अभिभावक जो स्वयं शिक्षा से वंचित रह चुके हैं, उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए शासन द्वारा चलाए जा रहे प्रयास के बाद भी स्थानीय स्तर पर हमें क्या करना चाहिए?
6: बच्चे पारिवारिक एवं आर्थिक व्यवस्था के कारण ही बाल श्रम के जाल में फंस जाते हैं। उनके लिए मात्र कागजी एवं कानूनी प्रक्रियाएं ही समाधान नहीं कर सकती, ये संपूर्ण समाधान का एक कारक मात्र हो सकती है। प्रत्येक सक्षम नागरिक को इसे अपना उत्तरदायित्व समझना होगा, तभी सकारात्मक बदलाव आ सकता है। साथ ही जो आप कह रहे हैं कि क्या हम करें, जैसे कि मैं नागरिकों से ये अपेक्षा करूंगी कि आप सब जानते हैं कि सरकार सभी नागरिक के आर्थिक उत्थान के लिए प्रयासरत है। तो इसलिए मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि जैसे विभिन्न विभाग हैं, जैसे श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कार्यक्रम विभाग, शिक्षा विभाग, इन सब विभागों में सरकार द्वारा विभिन्न लाभकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे हर नागरिक का आर्थिक पुनर्वासन हो सकता है, उनको आर्थिक लाभ दिया जाता है जिससे उनकी आर्थिक तंगी दूर हो सके और उनके बच्चों का भविष्य मजबूत हो सके। तो मैं आप सबसे अपेक्षा ये करूंगी कि आप इन विभागों में स्वयं जाएं, जिस विभाग के अंतर्गत आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं उसमें अपना पंजीयन कराएं, आवेदन करें और उस लाभ को प्राप्त करें, ना कि अपने बच्चे को बाल श्रम में धकेलें।
5: बहुत अच्छी बात कही आपने कि अभिभावकों के आर्थिक पुनर्वासन के लिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं, और सबसे बढ़कर बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए विशेषकर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है।
6: जैसे कि हमारे श्रम विभाग में सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय चलाए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ श्रमिकों के बच्चों के लिए है।
5: बिल्कुल,
6: उसमें अपना पंजीयन कराएं, अपने बच्चों को उसमें पढ़ाएं। ऐसी हर विभाग में विभिन्न योजनाएं हैं जो आप जिसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको जरूरत ही नहीं है कि आप बच्चों को आर्थिक तंगी की वजह से बाल श्रम कराएं। सरकार ने आपकी इतनी योजनाएं बना रखी है कि आप थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, थोड़ा सा आप समझें, विभागों में जाएं, आवेदन करें, पंजीयन कराएं, तो आपको ये आवश्यकता ही नहीं कि आपके बच्चे बाल श्रम करें।
5: बिल्कुल सही बात है, और इन तमाम योजनाओं का लाभ लेते हुए, बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध होते हुए आज शिक्षा के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। यदि आम जनता को कोई बाल मजदूरी करता हुआ दिखे तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते उन्हें तुरंत क्या कदम उठाना चाहिए? कभी कभी लोग इस बात की शिकायत या सोच कर नहीं करते हैं कि कहीं हमें लोग बुरा भला ना कहें या अपने ही समाज में हम विवाद के विषय ना बन जाएं। तो जैसे चाइल्ड लाइन है, कुछ नंबर्स होते हैं या अन्य कोई माध्यम जो लोग या नियोक्ता बच्चों से काम करवाते हैं, उनके खिलाफ कानून में किस प्रकार की सजाएं एवं जुर्माने का प्रावधान है?
6: हमारे यहाँ बाल श्रम निषेध कानून है, बाल एवं किशोर प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 संशोधित 2016 के अनुसार यदि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर रखा जाता है तो उसे एक दंडनीय अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में नियोक्ताओं को 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास या 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि वही व्यक्ति दोबारा ऐसा अपराध करता है तो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है। इसलिए मैं हर नागरिक से अपील करूंगी कि अगर आपको बाल श्रम करते हुए कोई बच्चा दिखता है तो चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर तत्काल संपर्क करें, उसकी सूचना दें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, आपके लिए कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, पर एक बच्चे का भविष्य हम सुरक्षित कर पाएंगे।
5: जहाँ तक बच्चों के सुरक्षा की बात है, दुर्भाग्यवश यदि कोई बच्चा ऐसी जगहों पे, पटाखे की दुकान है, ईंट भट्टे का कारखाना है, कांच के उद्योग है, ऐसी जगहों पर किसी कारणवश फंस गए हैं, कार्य में लिप्त हैं और उन्हें रेस्क्यू किया जाता है, तो उनके पुनर्वास या शिक्षा के लिए विभाग क्या कदम उठाता है?
6: बाल श्रम की पहचान होने पर उसे तत्काल श्रम से मुक्त कराया जाता है। इसके बाद श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, बाल कल्याण संरक्षण इकाई, पुलिस विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए बच्चे का पुनर्वासन सुनिश्चित किया जाता है। बच्चे को विद्यालय से जोड़ा जाता है, आवश्यकता अनुसार परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा विभिन्न परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाता है ताकि आर्थिक मजबूरी के कारण बच्चे दोबारा श्रम में ना जाएं। सोनभद्र जिले में जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर विभिन्न समितियां गठित हैं। इन समितियों के माध्यम से नियमित जागरूकता अभियान, ग्राम सभाएं, विद्यालय आधारित कार्यक्रम और मासिक समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाती है, जिससे बाल श्रम की रोकथाम और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
5: जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आज का दिवस, इस सुंदर ज्ञानवर्धक बातचीत को सुनने वाले श्रोता अपने जहन में बरकरार रखें, यदि कोई बच्चा ऐसे कार्य में लिप्त होता है या कोई अभिभावक किसी मजबूरी बस अपने बच्चों को अपने साथ किसी ऐसे संस्थान में कार्य के लिए ले जाता है तो निश्चित रूप से वह आपकी बातों को याद करते हुए अपने कदम पीछे जरूर करेगा और बच्चों को सुंदर भविष्य मिलेगा, समाज को नई दिशा मिलेगी। मैडम, आपने अपना समय निकाला, रेडियो के लिए इतनी अच्छी बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: बहुत बढ़िया, देखे जानकारी हम लोग सुनल गई और देखे जानकारी सुने के संगे संगे हम लोग संदेश भी सुनल गई और देवल जाए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखे उनकर जानकारी सुन के हमके उम्मीद बा कि अपन सब बहिन लोगन जरूर गठियोले हुई हैं, इनकर इतना पुरहर जानकारी रहल और के तरीका से का दंड मिल सकेला, का सजा हो सकेला, हर तरीका से ये अपन अचला पांडे जी बटौले हैं और उनकर देवल जाए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हम तो अपने बहन लोगन से यो कहल चाहब कि देखा ये समय जो ना आज का जो परिवेश बा ये देखा बड़ा ही संकट भरल हो जात बा। अब आप सोचो तो ये काहे, अब देखा बड़ बुजुर्ग हो या केहू जवान व्यक्ति नशा में लिप्त देखे में मिलल अजब तो बड़ी तकलीफ होला और कहीं ना कहीं देखा आज के समय में बहन बेटी भी भेजे में अब देखा डर महसूस होखेला। कहे कि देखो कितनो केहू बच बचा के सुरक्षा सोच के भेजे पर नशा करे वाले व्यक्ति खातिर जौन सामने जो भी रहला उ छेड़खानी करके ओकर बहुत बुरा ओकर प्रभाव देखे में मिलला और एकर प्रभाव समाज में भी देखा बहुत गलत मिलत बा देखे में। और साथ में नशा जौन होला नाश कर दे वाला मन, बुद्धि, शरीर और धन, ये तीनों चीज का नाश करेला। एकरे बावजूद भी देखा नशा करे वाले व्यक्ति खातिर ये बहुत ही आसान चीज होखला। वही लोगन देखे साथ में परिवार पर भी एकर बहुत बुरा प्रभाव पड़ला जे भी नशा करेला। और ऐसे कहल जला नशा करे के हा तो अच्छे काम का नशा करे, आगे बढ़े का नशा करे, बचवन के सही दिशा दिखावे खातिर ऐसे अपन नशा करें और बचवा लोगन आगे बढ़ाएं। और देखा जहाँ नशा के बाद बना तो नशा आप अगर करल भी चाहते हैं तो अपन खेती किसानी के करें, अपन काम काज आगे बढ़ावें। कहें कि देखा कहल जाला ना कि अन्न का सम्मान करे से अपने घर के बड़ी तरक्की होला। और देखा अगर खेती किसानी के नाम अगर बात अगर हो अगर तो देखा कहल जाला कि अपन पुरान समय में ऋषि मुनि कह गए ललन अन्न बहु कुर्वित, यानी कि अन्न के बढ़ाओ, अन्न का सम्मान करो। थाली में एक दाना फेंकल समझ लो कि किसान के पसीना फेंकल। अब सोचे कि अन्न का सम्मान हम लोगन काहे न करी, किसान का पसीना यानी कि देखा गेहूं को एक दाना बने में 6 महीना 3 सिंचाई 5 निराई और 1000 घंटा का मेहनत लगला। अब समझ ले कि अगर हम लोगन वो अन्न अपने हाथ में अपने थाली में ले करके ओके अगर हम लोगन रद्द करते हैं तो सोचें कि वो किसान का कितना बड़ा अपमान हो खला। कहे कि देखा अगर हम लोगन अपने रसोई में ही चले और रसोई में चल के अपन अनाज का जो बनाई ला भोजन भोज्य पदार्थ और ओके लेके अगर समझ लें कि आधा भोजन थाली में ले आधा भोजन करी आधा भोजन अगर हम लोगन रद्द करते हैं तो ओकर प्रभाव समझ लें कि बहुत ही बुरा पड़ला। वो अन्न देवता भी श्रापित करलन और कहर भी जाला जहाँ अन्न का सम्मान होला वही घर अपन बढ़ोतरी होला वहीं पे धन माता लक्ष्मी का आगमन भी होला। और वही लोगन हम तो कहब ना कि बात बात कही तो हम लोगन करते रहब लेकिन अब देवल जाए इनके धन्यवाद असला पांडे जी के एक मन मनसायन के साथ। तो फिल्म के नाम बा राजा भोजपुरिया, तो आवे बिना देर के लिए सुनल जाए।

0: देखे इतना बढ़िया गीत रहा ला और गीत अपन समाप्त हो गए, अपन कार्यक्रम भी समय पे कहो रल बाबा का। तो आप चलो चलाओ तो अपने गुलाबों बहन के दी इजाजत। तो सब बहन लोगन के राम राम।
1: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घरनी 102.7 पर आकाशवाणी का उबरक केंद्र है। इस समय शाम के 6 बजने वाले कुछ एक क्षण में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एगो सोशल मीडिया पोस्ट में कहले हमें कि सरकार पछिला 12 बरिस में महिला लोगिन के राष्ट्र निर्माण में उनकर पुरहर क्षमता का एहसास करावे बदे अनुकूल वातावरण तैयार कैले हवे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों के सेवा का 12 बरिस पूरा भइले के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में मीडिया के साथ संवाद कैले। यह मौका पे वहाँ के सरकार के उपलब्धियों का जिक्र करत कहली कि पछिला 12 साल में उत्तर प्रदेश आस्था आ आर्थिकी का एगो अद्भुत संगम बनल हो। वहाँ के कहने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी लीडरशिप के नाते ई संभव भइल बा। पछिला 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी अगुवाई में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आ सबका प्रयास के सिद्धांतन के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति भइल हो। विदेश नीति के जरिया से भारत के वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कैले के दिशा में सरकार का उठावल गैल कदमन के लेके प्रस्तुत बा एगो रिपोर्ट।
2: दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था।

0: जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार खुदरा पेट्रोल पंपन से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकन के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दे रहे हो। सरकार कहले हवे कि इनके अपने जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रन से लेवे के होई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एगो अधिसूचना में कहलस कि प्रतिबंध 90 दिन ले लागू रही। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA 21 जून के होखे वाले NEET UG पुनर्परीक्षा के परीक्षा अवधि के 15 मिनट बढ़ा के 195 मिनट कह दिले हो। ये परीक्षा दोपहरिया 2 बजे से संझा 5:15 बजे ले हुई। एगो रिपोर्ट।
0: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गोरखपुर के सतही प्रदेश के कई गो पूर्वी जिलन में आज दिन में लोग एक बार फिर से उमस भरल गर्मी महसूस कैले। हालांकि मौसम विभाग एह इलाकन में अजो कुछ जगहिन पर वही बिहने कहीं कहीं बरखा आ गरज चमक के साथे बौछार पड़ले का संभावना जतौले हवे। विभाग के ओर से एह दौरान कहीं कहीं बिजली गिरले आ तेज झोंकेदार बेरियो चलले का चेतावनी जारी कैल गैल बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम। भोला भैया देखा तोरो के राम राम और पंच भैया लोगन के भी राम राम हो।
1: राम राम भगेलू भैया और बतावल जाए।
0: भैया देखा हाल चाल तो सब ठीक है बा, लेकिन यह समय देखते हुआ कि जोन गांव ग्राम में हो रहल बा,
1: या घर घर ठहित छाय बड़ा जरूरी है।
0: काहे नहीं
1: ऐसे की जोन बाकी जोन हवा तूफान में खपड़ा उपड़ा उड़िया गिल हो भैया, ओके जोन बाकी हम लोग के मरम्मत कर बड़ा जरूरी है। और साथ साथ जोन बाकी खेतवाई भी मुश्किल कहीं आर पार कर दिले हवन, ओके भी ध्यान दिले की जरूरत है। और पात पतरी जोन टूट रहा हो भैया वो हो गई है, तो हमें भी जोन बाकी अपन ध्यान बांटे के होखला।
0: तो भैया देखा पात पतरी के बात जब कही देला तो देखा एक बात हमरा के याद पड़ी गई, काहे कि देखा आज जोन बाकी 12 जून बा, आज के दिन देखा बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनावल जा रहा
1: है। बात हो भैया, असल मौका पर पहुंच गए ना आप, और ये समय जोन बाकी ज्यादा श्रम भी करवावल जाला बचवा लोगन से भी, और यही से मतलब ये बाकी वहां से श्रम ना करवावल जाए
0: भैया। हो श्रम करावे के बात बा कि देखा सबसे तो गुड़ बात बा कि हम लोगन के बचवा लोगन के देखा कुल्हाड़ी और फावड़ा और टोकरी हाथ में देले के जरूरत नहीं बा, उ लोगन के हाथ में कलम कापी और किताब देले के जरूरत बा,
1: जैसन अवस्था ओकरे अनुसार जन बाकी जिम्मेदारी। यानी कि इस समय पढ़े लिखे के उम्र है तो उनके पढ़े लिखे के ध्यान देवे के चाहिए, और हमें अगर जन बाकी अति भार वाला दे देल जाए जहाँ मानसिक विकास के है तो वहाँ मानसिक दबाव आ जाए
0: भैया। और एकर भी कुछ कारण होखेला जैसे कि देखा ढेर श्रम करे वाला बचवा कौने स्तर के लोग रहेलन, जैसे देखला गरीब लोग। गरीब लोगन के रहेलन तो अगर गरीब के बचवन के माई बाऊ कहलन कि देखा अब हमरे पास कुछ बा नहीं, हम पढ़ा नहीं सकीला तो काम करिए वैसे अपन रोजी रोजगार करिए पेट भरे खातिर दो पैसा कमाई है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो देखा जब हर कुछ करे खातिर हम लोगन के पढ़ब जरूरी बा, शिक्षा जरूरी बा, तबे जा करके हम लोगन अपन अधिकार के जान सकीला। तो देखा हम लोगन के बात बत कही भैया तो चलबे करी, लेकिन आज पंचायती में का लेकर के आयल हुआ तो भैया लोगन के बताई देता।
1: तो भैया जोन आज जिसन वार्ता हम लोग शुरू हुई है तो ऐसे यही संबंधी जिसे बाल श्रम और भिक्षावृत्ति उन्मूलन विषय पर शेषमणि दुबे जोन रिसोर्स पर्सन जिला बाल संरक्षण इकाई से के हवन आपसे जोन बाकी सचिन कुमार वर्मा जी के बातचीत हुई है, ये शामिल कर गई है। और साथ साथ भैया देखा आज के बाजार भाव भी रावतगंज मंडी से है, समय पर वो बाँचल जाए।
0: और ओकरे संगे भैया देखा अब हम लोगन के आगे के तैयारी करे के जरूरत बा, बर बरसात औते बा, तो ऐसने में हम लोगन के भी देखा अपन कुछ सुधार करे को होला, जैसे देखा माटी के माटी के सुधार करे के बा और टिकाऊ खेती हम लोगन के करे के बा, तो यह विषय पर देखा विमल कुमार भाई जी से जो उनकी बनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर के बाटन, इनके इनसे देखा बातचीत करिया भैया, लेकिन ओकरे साथे फिर देखा मन मनसायन
1: के भी हुई भैया पंचम प्रसाद उनकर संगतिया भैया के, तो सब समय समय पर जोन बाकी हम लोग बैठकी में एक शामिल कर लिए। तो शुरुआत कहाँ से कर जाए
0: भैया देखा अब नेकी और पूछ पूछ हम तो कहा थे कि बाल श्रम और भिक्षावृत्ति उन्मूलन के जोन बात कहला तो ये जानल जाए, लेकिन देखा ऐसे पहले कोई संदेश भी बा वो सुन लिया जाए तब जानकारी के बाद हो गया।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बचपन हम सभी के जीवन का सबसे खुशनुमा और सबसे अहम हिस्सा होता है। बचपन एक ऐसा अनुभव होता है जो हमेशा हमारे चेहरे पर मुस्कान लाता है, पर जब बात बाल श्रम और भिक्षावृत्ति की आती है तो ये स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। बाल श्रम या भिक्षावृत्ति पूर्णतः अमानवीय है, जिसके लिए कड़े कानून भी बनाए गए हैं। फिर भी ये गैर कानूनी कृत्य आज भी जारी है। समाज में व्याप्त इस बुराई को जड़ से कैसे मिटाया जा सकता है, इस विषय पर आज हमसे चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं शेषमणि दुबे जी, जो जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र में रिसोर्स पर्सन के तौर पर कार्य कर रहे हैं। शेषमणि दुबे जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद सर।
4: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को शेषमणि जी ये जानकारी दे कि आखिर बाल श्रम होता क्या है, किसे माना जाए कि ये बाल श्रम है?
5: बाल श्रम हमारे समाज में एक बहुत बड़ा एक कुप्रथा है। इस कुप्रथा के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जो भी शिक्षा को वंचित करते हुए श्रम कराया जाता है उसे बाल श्रम कहते हैं।
4: हमारा संविधान हर नागरिक को एक अधिकार देता है
5: जी।
4: तो ऐसे ही बच्चों को भी अधिकार प्राप्त होंगे
5: जी।
4: तो बच्चों को ऐसा कौन सा अधिकार दिया गया है जो उन्हें बाल श्रम से सुरक्षा प्रदान करता है?
5: जैसा कि आपका है कि बाल श्रम जो शिक्षा का अधिकार है, बच्चों के परिवरिश में बाल श्रम के दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा का होता है। जो जीवन में जीने का अधिकार है उसमें मुख्यतः जो श्रम से जोड़ा जाए तो शिक्षा का अधिकार।

0: पीने जाते हैं, या हम कहीं भी जा रहे हो तो हमें दिखता है बाल श्रम करते हुए बच्चा, लगता है कि इसकी एज कम है, इसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो अगर हम उस बच्चे को बाल श्रम से मुक्त कराना चाहते हैं तो कहाँ पे हमें संपर्क करना चाहिए जिससे उस बच्चे को उस कुप्रथा से हटाया जा सके?
1: जी जी, प्राय देखा जाता है कि होटलों, ढाबों, कारखानों, रेस्टोरेंट और शादी विवाह में जो आज के समय परिवेश में चल रहे हैं उसमें जो की बच्चों से ही कार्य कराए जा रहे हैं।
0: जी,
1: यदि ऐसे कहीं बच्चे मिले जो बाल श्रम करते हुए दिखे तो अपने संबंधित थानाओं पे जो कि इसकी सूचना दे सकते हैं। जो संबंधित थाना होता है हर एक थानों पे बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त रहते हैं।
0: अच्छा,
1: बच्चों के संबंध में ही कार्य उनको करना है।
0: जी,
1: ऐसे सूचनाएं यदि प्राप्त होती हैं तो संबंधित थाने पे जाएं, वहाँ पे बाल कल्याण अधिकारी होते हैं, SI स्तर के होते हैं।
0: जी,
1: उनको यह सूचना देंगे आप और उस सूचना के आधार पे तत्काल वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी और बच्चों को अपने अच्छा में लेते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
0: जी,
1: और की जा भी रही है। और जैसे हमारे यहाँ जनपद स्तर पे प्रत्येक जनपद में जिला बाल संरक्षण इकाई है, आप जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित कर सकते हैं, श्रम विभाग को सूचित कर सकते हैं, संबंधित तहसील में सूचना दे सकते हैं और चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर पे सूचना दे सकते हैं। इन सभी के बारे में बाल श्रम जो बच्चे कर रहे हैं उनकी सूचनाएं आप देंगे, आपका नाम और पता गोपनीय रखा जाए।
0: बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि सूचनाकर्ता का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया टोल फ्री नंबर का, तो ये टोल फ्री नंबर क्या है हमारे श्रोताओं को आप बता दें?
1: जी, ये 1098 है, चाइल्ड लाइन नंबर, टोल फ्री नंबर है, इस पे आप भी ये सूचना दे सकते हैं।
0: जी,
1: आप जी 181 पे भी यदि बच्चों महिलाओं संबंधित यदि कोई शोषण संबंधित सूचना है तो आप बालिकाओं संबंधित आप इस नंबर पे दे सकते हैं। इन नंबर पे आप द्वारा दी गई सूचनाएं गोपनीय रखी जाएंगी और इस पे त्वरित कार्रवाई की जाती है।
0: बिल्कुल, मतलब आप कहीं भी देख रहे हैं मोबाइल जैसा हर किसी के पास मौजूद है इस समय, तो वो तुरंत 1098 पे कॉल करे और बता दे तो उस बच्चे को इस कुप्रथा से बचाया जा सकता है। अच्छा, श्रम तो बच्चे करते ही हैं, भोजन एक उसका मुख्य कारण होता है, आर्थिक तंगी जिसके कारण वो करने पे मजबूर होते हैं या कभी कभी उन्हें उनसे जबरदस्ती करवाया भी जाता है। तो ऐसे ही एक कुप्रथा और भी है जो हमारे समाज में व्यापक रूप से शायद फैली हुई है, वो है भिक्षावृत्ति। तो ये भिक्षावृत्ति और बाल श्रम इनमें क्या अंतर होता है?
1: जैसे कि बाल श्रम के अंतर्गत हमारे यहाँ से जैसे जो नियोक्ता होता है और जो मालिक होते हैं बच्चों से निहत रेस्टोरेंट आदि जो कारखानों में स्वतः से कार्य कराते हैं। भिक्षावृत्ति क्या है? भिक्षावृत्ति में पूर्णतः उसी प्रकार से दंडित है, इसमें कोई दंड का प्राविधान नहीं है। ऐसे बच्चों को दंडित नहीं किया जाएगा, ऐसे बच्चे जो स्वतः भिक्षा पठन कर रहे हैं उनको जो है कि अपनी अभिरक्षा में चिन्हित स्पॉट पे, जैसे कि हमारे सरकार द्वारा अभी चलाई जा रही योजनाएं भी है भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान, ये एक विशेष रूप से अभियान संचालित किए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मई माह में, मई 2023 में अभी इस अभियान जो है कि पूरे एक माह अभियान चले हैं, इसमें चिन्हित स्पॉट स्थान थे जहाँ पे बाल भिक्षावृत्ति कर रहे थे बच्चे, उनको जो है कि बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराते हुए और उनको जो है कि योजनाओं से लाभान्वित कराया गया है। और जो ऐसे गिरोह थे जो भिक्षावृत्ति कराते, जैसे स्वतः भिक्षावृत्ति करना और एक गिरोह होता है जैसे कि बच्चों से भिक्षावृत्ति करना
0: का फायदा उठाते हैं।
1: जी, तो ऐसे गिरोह को भी चिन्हांकन कर नियमानुसार आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है और की गई भी है।
0: जी, तो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी महिला कल्याण विभाग द्वारा थाना ESTO मानव तस्करी रोधी इकाई,
0: जी
1: मानव तस्करी रोधी इकाई हर एक जनपद में एक थाना है हमारे यहाँ, मानव तस्करी रोधी इकाई, इसमें सारे बच्चों संबंधित, मानव तस्करी संबंधित, बाल श्रम, बाल विवाह, ये सारी संबंधित विधिक कार्रवाई वही मानव तस्करी इकाई से होती है।
0: बिल्कुल, अच्छा, ये बाल श्रम और भिक्षावृत्ति दोनों ऐसी समाज की कुप्रथा है जो बहुत ही मतलब गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये ऐसा ना हो, सरकार तो प्रयास कर ही रही है, सरकार के मार्फत आप लोग लगे हुए हैं, समाज इसमें अपना क्या योगदान दे सकता है?
1: जी बिल्कुल, चूंकि हम कि समाज में जो सामाजिक कुप्रथा है इसको समाप्त करने के लिए सबसे मूलतः हमारे यहाँ समाज में रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर ही निर्भर है। क्योंकि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो भी संविधान बनाए जा रहे हैं, वो सब सामाजिक व्यक्ति जो समाज में रहते हैं उनके ऊपर ही निर्भर है कि उस पे कितना अमल करते हैं। तो ऐसे बच्चों को ऐसे स्थान का स्पॉट पे चिन्हित करते हुए, उन बच्चों का चिन्हांकन करते हुए उनको जो है कि

0: योजनाओं से लाभान्वित कराया जा रहा है और आम जनमानस में यह चीज देखा जा रहा है कि बच्चों से स्वकल्पित कार्य में न कराएं, अपने जो रोजमर्रा के जो कार्य हैं उसमें न जोड़ें। यदि कहीं स्पॉट पे, दुकान पे या ढाबा पे या कहीं स्थान पे बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं या बच्चे कार्य कर रहे हैं तो उन दुकान से किसी भी प्रकार की सामग्री क्रय न करें जिससे बाल श्रम रोका जा सकता है। यदि बाल भिक्षावृत्ति जैसे प्रकरण यदि आते हैं तो यदि कोई बच्चा बाल भिक्षावृत्ति करते हुए पाया जाता है तो तत्काल जिला बाल संरक्षण इकाई संबंधित थाने को या जो है कि टोल फ्री नंबर को सूचित करें जिससे कि उस बच्चे को संरक्षण में लेते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर योजनाओं से लाभान्वित कराया जा सके।
1: बाल श्रम या भिक्षावृत्ति जो बच्चे कर रहे हैं तो ये तो सही है कि समाज उसमें योगदान देना चाहता है अपना, तो अगर किसी रेस्तरां या जहां हमें दिखे जो इनकी सेवा ले रहे हैं वहां से हम उनकी सेवा लेना बंद कर दें ताकि वो मजबूरन उन बच्चों को हटाए, ये तो अच्छा प्रयास होगा। इसमें समाज को जागरूक होना ही चाहिए। तो सरकार इसमें किस तौर तरीके से उनको संरक्षण देती है, जैसे बाल श्रम और भिक्षावृत्ति से बच्चों को छुड़ा तो ली है लेकिन सरकार किस तरीके से उनको संरक्षण देती है?
0: जी बहुत अच्छा है। इसमें हमारे यहाँ जिला बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत बच्चों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से और सरकारी भी हैं, जैसे हमारे जनपद सोनभद्र में बाल गृह बालक संस्था स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से संचालित है और बाल गृह बालिका है, शिशु गृह है। ऐसे बाल श्रम से मुक्त कराए गए या भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को वहाँ संस्था में बाल कल्याण समिति के आदेश पे नियमानुसार वहाँ संरक्षण प्रदान कराया जाता है और वहाँ पे बच्चों के खान पान, रहन सहन और शिक्षा दीक्षा सारी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती है।
1: जी।
0: और इस योजना के अंतर्गत उनको जो है कि पारिवारिक पुनर्वासन कराया जाता है, पारिवारिक पुनर्वासन किए जाने के बाद उनको शिक्षा से जोड़ा जाता है, शिक्षा के साथ साथ उनको मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अंतर्गत भी आच्छादित कराया जाता है जिसमें 2,500 रूपया प्रति माह की दर से दिया जाएगा 21 वर्ष तक, जब तक बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा।
1: बिल्कुल।
0: यदि बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो उसे इस योजना से लाभान्वित नहीं कराया जाएगा। इसके लिए भी उनका परामर्श और फॉलो अप किया जाता है जिला बाल संरक्षण इकाई टीम द्वारा। प्रत्येक माह में उनका फॉलो अप और ऐसा याद किया जाता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं और उनको काउंसलिंग भी कराई जाती है यदि आवश्यकता पड़ती है तो जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा।
1: जी, मतलब बाल श्रम या भिक्षावृत्ति ना करे बच्चे उसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है।
0: जी।
1: तो ये योजनाएं बच्चों तक आपको अगर पहुंचाना है तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: इन योजनाओं के लिए हमारे यहाँ जनपद स्तर पे के साथ साथ ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पे, ग्राम स्तर पे बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति होती है।
1: जी।
0: जो सिर्फ बच्चों के पे ही काम करते हित में वो समिति का गठन किया गया है। उस समिति के अंतर्गत ऐसे बच्चों का चिन्हांकन जो बाल श्रम या बाल भिक्षावृत्ति या बाल विवाह के प्रकरण होते हैं उनका डाटा वो इकट्ठा करेंगे, उनके माध्यम से उनको व्यापार जो कर रहे हैं उनको भी देखा जाता है और उनको योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है और योजनाओं से उन्हें लाभान्वित कराया जाता है।
1: चलते चलते सेशमणि जी, आपका कुछ संदेश हमारे श्रोताओं के लिए?
0: हमारा यही संदेश है कि बच्चों से बाल श्रम न कराएं, क्योंकि जो बाल श्रम होता है बहुत बड़ा पाप होता है। यदि पाप शब्द का आप सभी को तो जानकारी है ही, तो ये सबसे सर्वोत्तम ऊपर की स्थिति में होता है, तो इसमें यदि बाल श्रम की रोकथाम यदि हम सबकी जिम्मेदारी होती है और हम स्वयं से यदि सुधार करेंगे तो हमारे समाज से यह कुप्रथा समाप्त हो जाएगा। इसलिए न हम बाल श्रम कराएं, यदि करते हुए किसी को देखें तो उसकी सूचना जरूर जो हमारे द्वारा बताया गया है उन पे आप सूचित करें जिससे कि बाल श्रम मुक्त समाज बनाया जा सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल। सेशमणि जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बाल श्रम और भिक्षावृत्ति उन्मूलन विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: हाँ बोला भैया।

0: मत कहिए बिल्लक, निश्चित रूप से जो भी प्रकार के जनवा की बचवा लोगों से काम करे से करावे से परहेज करे के चाहिए। और सबसे बड़ बात जौन बाल विवाह वाला अपने अंचल में होखला कि चला भाई बात बत कही हो गई और सट पट गए तो चला भाई ओके जौन बाकी निपटा दा, ये भी एक तरह के गुनाह बा। तो ऐसे भी जौन बाकी बचे के चाहिए आदमी के। तो भैया देखा हम लोग के बात बत कही तो होत रही, लेकिन मन मनसायन के भी बखता होता भैया
1: काहे नहीं। तो देखा पंचम प्रसाद उनका संगतिया भैया के एक गीत गौने ही बात है, ऐसे भैया लोगन के धन्यवाद दिया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: लो भैया,
1: हाँ बोला भैया।
0: देखा पंचम प्रसाद और संगतिया भैया कितना जोशीले स्वर में जोन बाकी अपन मन मनसायन करोलन भैया, बिल्कुल मन फरहर हो गई।
1: और बोला भैया देखा मन
0: हाँ
1: मनसायन तो सुनल गई, लेकिन देखा इनकर गीत गौनाई में हर तरह के संदेश
0: संदेश
1: छिपल
0: छिपल रहे, बिल्कुल बिल्कुल, साफ
1: देखा।
0: सफाई के बाद जोन
1: और एक बात
0: रहा।
1: यो कहलन कि देखा 4 बजे भोरे उठ जा ललनवा पलनवा छोड़ी के
0: क्या
1: ना,
0: बात है जी,
1: तो भैया इस संदेश ई रहल कि 4 बजे भोर में उठ के लइकवा बचवा अगर अपन खटिया चारपाई छोड़ करके पढ़न तो देखा ओकर बात दूसर होला।
0: और भैया अगर कुछ न करे तो जनबा की अगर बाहरे निकल जाए घूमे टहरे लगे तो स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगी, और जब स्वस्थ शरीर रहे तो स्वस्थ मन भी, मस्तिष्क के विकास भी हुई, और वैसे में जौन भी पढ़िए लिखे चाहे जौन भी काम करी है तो जौन भैया भैया मन से हुई
1: काहे नहीं। तो
0: तो निश्चित रूप से।
1: अब बात आयल, अब जैसे कि देखा साफ सफाई के बात हो गई और ओमे हम लोगन के कुछ आगे जैसे अब पढ़ाई लिखाई के बात हो गई, तो
0: बिल्कुल
1: हम लोग
0: बिल्कुल।
1: देखा है किसान और हम लोगन के भी अपन आगे के योजना बनौले के जरूरत होखेला खेती बाड़ी के, कहे कि हम लोग हर तरह से खेती करेला
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ओमे हम लोगन के हानि होत जाला।
0: भैया, यही से तो जौन बाकी हानि ना होए तो सबसे पहले तो शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं कि जौन मेड़ मेड़ अपन हो खेत हो ओकर जौन बाकी पानी बह करके कहीं नदी तक ना पहुंच जाए, तो पहले तो मेड़बंदी हम लोग कर लें या अपन जौन बाकी खेत के माटी बचाई, ओके खातिर जौन मुस्कई लोग रह लगल हों भैया ओके हम जौन पहले बंद करें, और साथ साथ जौन बाकी मेड़बंदी भी होके और पेड़ लगावे खातिर जौन बाकी गड्ढा खुदाई हो जाए भरपूर, जौने में कि अगर पहला पानी बरसे तो गड्ढा में भर जाए और ये माटी कटाव भी ना होए, और दूसरी बात जौन बाकी पौधरोपण करे के लायक अच्छा सा जौन बाकी गड्ढा तैयार हो जाए।
1: और ओकरे साथ भैया जो मेड़बंदी के बात कहला, तो वो मेड़बंदी से देखा हम लोगन के हर तरह के फायदा बा, जैसे कि माटी के मलाई जोन कहल जाला
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: भैया
0: बिल्कुल
1: बही जाला, और ओकरे साथे साथे हम लोगन के अपन नजरिया घुमौले के जरूरत बा, सरकार के ओर से भी बहुत हम लोगन के सुख सुविधा मिल रहल बा और रोज रोज जगावे के काम भी हो रहल बा कि देखा हम लोगन के अपन माटी के बचौले के जरूरत बा, स्वास्थ्य के बनौले के जरूरत बा और आब हवा सही रखले के जरूरत बा।
0: बिल्कुल, एकरे खातिर तरह तरह की योजना भी चलावल जा
1: हाँ
0: रहा
1: हाँ
0: है।
1: काहे कि देखा हम बात कर रहे थे परंपरागत कृषि विकास योजना की,
0: हाँ हाँ बिल्कुल भैया,
1: ये योजना से भैया हम लोगन के अपन खेती के बचौले के जरूरत, जिसे कहा जाला कि रसायन मुक्त खेती हम लोगन के कैले के जरूरत बा, ऐसे हम लोगन के देखा एक बार भैया छूट नहीं पाई और ना हम लोग उन्हें बदल सकीला,
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: देखा ओकरा धीरे धीरे करके हम लोगन रसायन से नाता तोड़ सकीला और अपन जैविक से नाता जोड़ सकीला।
0: जहाँ बचावे के वातावरण भैया वहीं तो जोन बाकी भयभीत हो जाला आदमी कि जो है कि आखिर कहीं हम लोग खराब कर थी का अपन माटी के, तो निश्चित रूप से जो रासायनिक खाद हो रासायनिक दवा हो ओके माध्यम से जोन बा हम लोग अनाज उत्पादन करत हैं तो हमें माटी के जीवांश के मात्रा खत्म हो रहा हो, जीवांश के मात्रा बरकरार रखे खातिर हमें जोन बाकी परंपरागत खेती पर आवे के होखी, जौने में कि हम लोग पशुपालन कैले हैं, पशुपालन से जौन बाकी हम लोग के फसल अवशेष जौन भी हुई ओके जौन बाकी वो आहार के रूप में ले हैं पशु, और फिर जो ओकर गोबर हुई वो जौन बाकी खेत में डाल जाये, और खेत में डलने के बाद जौन बाकी या तो सीधे आप डली हैं तब तो जो है कि कुछ समय लगी वो के जौन बाकी मृदा के जीवांश के मात्रा बढ़ावे में, और अगर वो के हम लोग सड़ा के डालें जैसे वर्मी कंपोस्ट बना करके या तो जो है कि नाडेप कंपोस्ट बना करके एक माध्यम से अगर करें तत्काल काम कर अब शुरू कर दे भैया।
1: तो और यही से देखा तत्काल काम करे के बात बात केंद्र सरकार के भी 12 साल के जौन उपलब्धि हम लोगन के मिलल बा कि रसायन मुक्त खेती करे के बात, तो वो हमें देखा एकर मुख्य उद्देश्य ई बा भैया कि हम लोगन के जैसे हम लोग है किसान, हमनी के आय बढ़ौले के जरूरत बा और पर्यावरण संरक्षण खातिर अपन कृषि क्षेत्र में न अभूतपूर्व बदलाव लिहल जरूरी बा। अब ये बदलाव में जैसे कहल जाला ना कि रसायन मुक्त खेती के बढ़ावा देवे के बा और एहमे प्राकृतिक खेती के ओर ध्यान देहल जरूरी बा, तो एहमे हम लोगन के ध्यान देव जरूरी बा।
0: और एहमे सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो भैया कि ओमे जैसे पेड़ पालो जौन अधिक मात्रा में हम लोग मिले पहले ओकर पत्ती जौन झड़ करके जौन बाकी गिरे जमीन में और सड़ करके जौन जीवांश के मात्रा बढ़े केचुआ जौन हमें बढ़े लोग तो ओके से जोन बाकी खेती में उर्वरा शक्ति क्रमशः बढ़त रहत रहे। आज वही के क्षण हो क्षति हो रहा है क्योंकि ये जहरीला खाद डाले की वजह से जौन भी ओमे केचुआ हवन वो सब चाहे मित्र कीट जौन भी हवन वो नष्ट हो जा रहा हवन। तो ये से हम लोग के पूर्व तैयारी करे पड़ी भैया, तब जा करके हम लोग जौन बाकी एक तो तैयारी होत बा, बहुत किसान भाई लोग करत भी हवन और ऐसे बड़ा लाभ लेत बा लोग, क्योंकि जो गाय के गोबर से खेती हो रहा है तो जौन हम लोग रासायनिक दवा खाद खरीदत ही उसे मुक्ति मिल रहा है। तो जौन हम लोग के ज्यादा खपत होते रहे वो बचत होत बा, एमे जौन बा की आय में वृद्धि भी हो रहा है।
1: तो भैया
0: ये समय देखते हम तापमान में भी चढ़ाव उतार हो रहा है, तो आज के जौन बा की न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस आकल गई है, जौन की कुछ दिन पहले जौन बा की 40, 42, 45 तक बढ़ गई रहे। तो ऐसे में हम लोग के जौन बा की जोड़ जोड़ देख करके खेती पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और जौन भी हम लोग के हरी खाद है ओके जौन बाकी सहेज करके समय से जुताई के लिए जरूरत हो जब पानी बरसी तब।
1: तो भैया अब बात बात कही हम लोगों के होते रहे, लेकिन देखो आगे हम लोगों के बात बढ़ोले की जरूरत बात, हम तो कहते हैं कि ना कि बिना देर कहले जौन खेत तो बचावे के बात कहत रहा, तो खेत बचाओ अभियान जौन भैया चल रहा बा बात हम लोग के सुनल जाए।
0: हाँ, तो मृदा सुधार और टिकाऊ खेती यह विषय पर जौन बाकी विमल कुमार भाई जी बतावत हन ओके हम लोग सुनल जाए, लेकिन कुछ संदेश भी बा वो सुन लो जाए।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोताओं, प्राकृतिक खेती की बात जो की जाती है आज, इससे पूर्व में जो हम लोग मोटे अनाज उत्पादन करते थे निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के उसमें ऊपरी खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जो अपने यहाँ पालतू पशु थे उनके गोबर से, लेड़ी से खाद के रूप में प्रयोग करके जो हम लोग अनाज उत्पादन करते थे निश्चित रूप से वो बहुत ही पौष्टिक हुआ करता था। चाहे मक्का लीजिए या सवा कोदो मेड़ो मिझरी या जो भी आज श्रीअन्न के रूप में प्रचार प्रसार भी किए जा रहे हैं, आज पुनः उसी पर लौटने की बारी आ गई है। लेकिन इसका जानकारी धीरे धीरे लोगों के अंदर लुप्त होते चली जा रही है, कारण कि जो पुराने किसान थे वे आज नहीं रहे हैं। जो नए लोग नए परिवेश के जो अनाज उत्पादन कर रहे हैं उसे दिन प्रतिदिन अपना मिट्टी या जल ये सारे जो है कि दूषित होते चले जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए फिर से अभियान चलाई जा रही है। मोटे अनाजों की खेती हम कैसे करें, खेत की तैयारी कैसे करें और मृदा को कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, इन विषयों पर बातचीत करने के लिए आज सोनभद्र जनपद अंतर्गत मेयरपुर ब्लॉक के बनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर में हैं, और यहाँ हमारी मुलाकात श्री विमल कुमार सिंह जी भाई जी से हो रही है। आपका क्या अनुभव रहा है और क्या अभियान है, कैसे हम लोग इसको धरातल पर ला सकते हैं और पुनः अपने मिट्टी को जीवांश के मात्रा युक्त बना सकते हैं, इन विषयों पर बातचीत होगी। तो विमल कुमार भाई जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो ये मृदा संरक्षण के अभियान लोग चला रहा है, पानी को किस तरीके हम लोग शुद्ध कर सकते हैं इस पर बात चल रही है, और मोटे अनाज को हम लोग किस प्रकार उत्पादन कर सकते हैं, इन विषयों पर बहुत चिंतनशील हैं लोग। तो क्या अनुभव है और लोगों से क्या कुछ कहना चाहते हैं भाई जी?
4: सबसे पहले सभी को धन्यवाद। वास्तव में अभी हम लोगों ने इस वर्ष की गर्मी जो है सभी लोगों ने झेल रहे हैं। 44 डिग्री तक की जो है टेम्परेचर आज हम लोगों ने झेला है, और एक तरह से ये हम खतरे की घंटी है कि जो मौसम बदल रहे हैं, तो हम किसान भाई लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है कि हम अपनी खेती को कैसे टिकाऊपन उसको बनाए रखें।
1: जी जी।
4: तो इसके लिए तो पहले हमको

0: पे खेतों के मेड़ों पर ध्यान देना पड़ेगा
1: जी
0: कि ताकि हम अपने जो खेत के मेड़ हैं कहीं जो टूटे फूटे हैं उसको हम ठीक कर लें
1: जी, जी
0: ताकि खेत का पानी खेत में ही रहे
1: जी।
0: जब खेत का पानी खेत में ही रहेगा तो वो जो है पानी जो है जो भी बरसात का पानी आएगा तो उससे हमारी जो उपजाऊ ऊपर की जो मिट्टी बहेगी नहीं और वो उसी खेत में ही रहेगा, खेत की नमी भी जो बढ़ेगी। एक तो ये हमको हम सबको मिलके जो एक अभियान करना चाहिए जो जहाँ जिस गांव में है
1: जी, जी,
0: यहाँ से शुरू किया जाए। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने गांव-गांव में नडे पिट बनाया है उससे जो है और वर्मी कंपोस्ट के भी पीट और इसके लिए भी हम लोगों ने तमाम किसानों के साथ बातचीत किया, इसको सिखाने की भी काम किया है
1: जी।
0: तो इसके लिए भी हम लोगों को जो है अपने आसपास के जो खर पतवार गोबर मिट्टी इसको भी इसका उपयोग करके हम उसको जो है जो जीवाश्म उस तरह के हम खाद तैयार करें
1: जी, जी।
0: और अभी हमारे पास थोड़ा समय है तो ये भी हमारे खेती के लिए उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अभी हम लोगों ने बीते जो रवि फसल में देखा कि किस तरह से यूरिया और डीएपी खाद को लेने के लिए मारामारी हुआ था
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: भाई इसके लिए तो हमको सचेत रहना पड़ेगा, खासकर पूरी दुनिया में जिस तरह से अशांति वातावरण है
1: जी
0: उस दौरान भी आज महंगाई जो है किसानों के ऊपर सीधे सीधे वो चीजें जो है असर करने वाली है
1: जी,
0: कि हमें रासायनिक खाद और इस तरह की दवाएं इससे जो हमको अपने को जो है धीरे धीरे खेत में जो कम प्रयोग करने की बात होनी चाहिए
1: जी।
0: इसके लिए हम लोग जो है जैविक कीटनाशक दवाएं और ये सब भी इसको भी प्रयोग करने की आवश्यकता है
1: जी जी जी, जी।
0: दूसरी बात जो है कि आज पूरे देश में चिंता है कि किसानों का की आय कैसे बढ़े कैसे फसल का उत्पादन बढ़े
1: जी
0: इसके लिए खासकर सोनभद्र जनपद के जो हमारा खेत है जो टेरेन है यहाँ का जो है काफी उबड़ खाबड़ है
1: जी,
0: इस तरह की जमीन है इसमें हमको यहाँ पर मोटे अनाज की खेती को प्रसार करना बहुत ही आवश्यक है
1: जी, जी,
0: पिछले
1: जी।
0: हम लोगों ने इसमें जो काम भी किया है खासकर जो है कृषि विज्ञान केंद्र और IIBR जैसी संस्थाओं के साथ भी मिलकर के हम लोगों ने मोटे अनाज या अल्पकाल की अवधि की फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने ऐसे जो है सैकड़ों किसानों के साथ काम किया है और
1: जी,
0: इसका
1: जी,
0: एक अच्छा सा रिजल्ट मिला।
1: यहाँ कौन कौन से तो मोटे अनाज मतलब
0: यहाँ पर मोटे अनाज खासकर जो है सावा है
1: जी,
0: और मक्का है
1: जी,
0: और रागी है, रागी का भी बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर
1: उत्पादन
0: है
1: जी, जी, जी।
0: इस तरह के और कम अवधि के जो फसल है आप चाहे तो धान में भी मोटे अनाज
1: जी, जी, जी,
0: उसके
1: जी, जी।
0: भी हैं कम अवधि में भी जो है उसका उत्पादन होता है।
1: पहले
0: और
1: हम लोग जो धान उत्पादन करते थे जैसे साठी हो गया
0: जी जी
1: शेरी हो गया बाकर हो गया
0: इस तरह की इसको
1: पता अब मिल पाएगा उसका बीज कहीं
0: इसके नहीं इसके लिए भी जो है हम लोग बात कर रहे हैं
1: जी, जी
0: ऐसे जो संस्थान है कि भाई इस तरह की बीज जो आज किसानों को जो है उपलब्ध कराई जाए
1: जी, जी, जी, जी।
0: ताकि जो कम समय में वो पूरा फसल उनको मिल जाए तो इसके लिए भी हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं
1: जी।
0: अभी हमारा जो है कल जो है एक किसानों का शैक्षिक भ्रमण जाने जा रहा है कृषि विज्ञान केंद्र में
1: जी
0: खासकर जो है वो खरीफ की फसल की कैसे तैयारी करें इस पर भी वहाँ चर्चा की जाएगी
1: जी, जी
0: तो
1: जी।
0: उसमें हमारे जो किसान प्रतिनिधि लोग हैं
1: जी।
0: वो जो है उनसे बातचीत करेंगे वैज्ञानिकों के साथ जो
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो वो वहाँ से वापस लौट करके अपने गांव में फिर किसानों के साथ वो जो है बातचीत करेंगे कि हमको क्या क्या तैयारी करनी है
1: जी, जी।
0: खासकर प्राकृतिक खेती की जो बात करते हैं
1: जी
0: तो हम लोगों के साथ तो 250 किसान तो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं दूसरा और भी किसान इसमें रुचि दिखा रहे हैं कि नहीं हम भी जो है इस तरह की खेती को आगे बढ़ाने को हैं
1: जी, जी,
0: क्योंकि लोगों के जो अनुभव हैं कि जिन्होंने रासायनिक खाद और दवाओं का उपयोग करके जो फसल शुरू में तो बहुत अच्छा फसल ले लिया लेकिन आज उनका उत्पादन जो घटते जा रहा है
1: जी, जी,
0: और उनका जो कहते हैं हमारा जो लाभ जो है काफी हुआ लेकिन आज वो उनके हाथ में जो वो चीजें नहीं आ रही हैं
1: जी, जी,
0: तो हम लोग उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि इस तरह से जो है आप सावधान हो जाइए इस तरह की खेती की पद्धति को अपनाइए ताकि जो है आपका उत्पादन, जो मृदा का उत्पादन क्षमता है वो टिके रहे।
1: अच्छा, इसमें और बहुत देखने को मिलता है कि जैसे आज जो यूरिया डीएपी खाद इत्यादि डाल करके जो उत्पादन किया जा रहा है उसमें बीमारी बढ़ने की संभावना ज्यादा दिख रही है।
0: जी जी, इसमें जो उनकी जो वो है प्रतिरक्षण की क्षमता कह लें, फसल में भी प्रतिरक्षण की क्षमता होती है।
1: जी जी,
0: वो अनुभव में आ रहा है कि वो उसमें बीमारियां जल्दी लग जा रही
1: हैं। हाँ, हाँ, हाँ,
0: और उससे क्या है कि फिर फसल का उत्पादन जो है सारा चीज जो है काफी क्षति हो जाती है।
1: जी जी, जैसे मोटे अनाज है उसमें डायबिटीज शुगर इत्यादि के बताते हैं कि फ्री रहता है, नहीं है?
0: हाँ, ये मोटे अनाज वास्तव में इस तरह से हम जो है रासायनिक खादों से फ्री रहे, इसका जो उत्पादन होगा
1: जी जी
0: उससे जो है खासकर डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं कि मोटे अनाज का सेवन करिए, बहुत ही पौष्टिक होता है।
1: जी जी जी,
0: और इसके लिए प्रिस्क्राइब भी करते हैं कि आप जो मोटे अनाज है, आप सामा कोदो है, जौ है, ये सब चीजें जो है आप इसका सेवन जरूर करें। केवल एक ही का अनाज खाते रहेंगे तो वो चीजें जो है स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और इसी के साथ अभी हम लोग जो है 20 गाँव में जल संचय जल संरक्षण का भी हम लोगों ने काम खास कर किया है
1: जी।
0: और नाबार्ड के साथ भी हम लोग 3 गांव में काम किया है जल संचय मिट्टी बचाने का जो है। इसमें अभी हम लोग जो है खास कर जो है किसानों के साथ जो है हम लोग वो खेत तालाब जिसको फार्म पांड कहते हैं, तो वो भी एक प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। अगर कोई पानी के बिना, एक दो पानी के बिना जो है फसल खत्म होने जा रहा है, सूखने जा रहा है, तो वो फार्म पांड एक तरीका है, उस पानी का उपयोग करके उस फसल को हम बचा सकते हैं।
1: जी जी,
0: इसका भी हम लोग काम शुरू किए हुए हैं।
1: क्या बात।
0: इसी के साथ हम लोग जो है नालों में जो है जो पानी सूख जाता है
1: जी,
0: उस समय उन्हें दोहा बनाने का, ताकि नीचे जो पानी बह रहे हैं उस पानी का हम लोग पकड़ करके उस
1: संरक्षित
0: कर उस पानी को हम लोग जो है फसलों में दे करके उस फसल को भी हम लोग बचाने का, ताकि किसानों का उत्पादन जो है बढ़े या फसल नष्ट न हो।
1: जी,
0: इसके
1: जी,
0: लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारे किसान भी काफी उत्साही हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने सब्जी की खेती के लिए भी अभी से ही किसानों को सलाह दिया है कि आप लोग अभी से ही अपने जो है अपने घर के पास के जो है छोटे एक एरिया में जो है सब्जी उगाने के लिए अभी से ही बीज और खाद उसकी जो है आप जैविक खाद वगैरह की व्यवस्था अभी कर लीजिए।
1: जी जी,
0: और इसी के साथ हम लोगों ने ये भी कहा कि आप जो है अपने घर के आसपास जो है कम से कम 5 पेड़ लगाने के गड्ढे भी आप अभी खोदने का काम कर लीजिए। इस तरह से हम लोगों के प्रयास चल रहा है और किसान काफी उत्साही हैं कि नहीं, हम लोग इसमें इस काम को करेंगे। इसी से हमारे जो है जो भविष्य है हमारा
1: जी जी,
0: हमारे जो आने वाली भावी पीढ़ी है उनकी जीवन जो है काफी एक तरह से सुरक्षित रहेगा, तभी हमारे जो है भविष्य उज्जवल बनेगा।
1: अच्छा, जो मोटे अनाज हैं उनके जो अवशेष होते हैं फसल अवशेष वो भी गल करके खाद बन जाते हैं।
0: जी, हाँ।
1: और जो आज जो हाइब्रिड इत्यादि का जो उपयोग कर रहे हैं उसमें जो है कि गलता नहीं
0: गलता। हाँ,
1: तो इस दृष्टि से भी मतलब भूमि संरक्षण में वो ज्यादा कारगर हो सकता है।
0: अभी हम लोग जो नडे पीट में है इस तरह के खरपतवार है उनको जो है उसका उपयोग करते हैं, उसको खाद के रूप में जो है उसका उपयोग किया जाता है खरपतवार। फिर मल्चिंग विधि भी उनको बताई गई है, तमाम तरह के जो है अभी हम लोगों ने सिंचाई की पद्धति भी जो है इंट्रोड्यूस किया है कि कैसे फुहारे पद्धति सिंचाई किया जाए, कैसे टपक पद्धति से जो है सिंचाई किया जाए, ताकि कम पानी में जो है उनकी फसल जो
1: अधिक उत्पादन
0: अधिक उत्पादन हो
1: जी,
0: और
1: हाँ,
0: अच्छे ढंग से उसका हो सके, इस तरह का भी हम लोगों ने प्रयास किया है।
1: तो किसान भाई बहन देखें कितना विस्तार से बिमल कुमार भाई जी बताने का प्रयास किए, खरीफ की तैयारी हम कैसे करें, मोटे अनाज कितना उपयोगी है। आज जो हम अधिक से अधिक अनाज उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ बीमारी भी बहुत लेकर के आ रहे हैं, अगर मोटे अनाज का सेवन करें तो निश्चित रूप से बीमारी से मुक्त रहेंगे। और साथ साथ जो अपने माटी के रक्षा की बात जो चल रही है उससे भी मिट्टी का भी उर्वरा शक्ति हम बढ़ा सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बिमल कुमार भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों

0: मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: प्रिय किसान बहनों और भाइयों, ये धरती हमारी माँ है। ये खेत केवल अन्न और फल सब्जी नहीं देते, ये हमें जीवन देते हैं। लेकिन अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही, इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। और इसलिए हमारे विजनरी और समय के बहुत पहले और बहुत दूर तक की सोचने वाले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केवीके के लोग, कृषि विज्ञान केंद्रों के, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जन प्रतिनिधि, जन नेता और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे, कैसे पहचाने, खाद्य तेल का कम उपयोग करें और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे। आप सबसे मेरी अपील है कि इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए। धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो। हम खेत बचाएं, तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। धन्यवाद।
3: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
4: बोला भैया, देखा कितना बढ़िया, हम लोगों के संदेश भी सुनल गई और जानकारी भी सुनल गई और एकदम बढ़िया फरिया के जानकारी भी दिवावला। तो हम तो कहते कि जानकारी जब दिवावल गई तो देखा थे तोहरे हाथ में कहाँ के पाती लग गई बात, तो भैया लोगों के बताई देता।
5: भैया रावतगंज मंडी के बाजार भाव हो और कुंतल में हो, बाबूलाल मोर भैया भेजले हूँ। और बैगन लंबा वाला आज रहा 1200 से 1500 रुपये कुंतल, बैगन गोल 2000 से 2200 रुपये कुंतल, टमाटर 4000 से 4500 रुपये कुंतल,
4: अच्छा,
5: आलू सफ़ेद 900 से 1000 रुपये कुंतल और आलू लाल 1000 से 1200, फूल गोभी रहा भैया 1500 से 2000 रुपये सैकड़ा और पत्ता गोभी रहा 1800 से 2000 रुपये सैकड़ा, खीरा 3000 से 3500 रुपये कुंतल और खरबूजा रहा भैया 1200 से 1400 रुपये कुंतल, तरबूज 1200 से 1300, लहसुन 7000 से 8000 रुपये कुंतल, प्याज 1800 से 2000 रुपये कुंतल और चुकंदर रहा 1200 से 1500 रुपये कुंतल,
4: अच्छा अच्छा,
5: गाजर 1500 से 2000 रुपये कुंतल, मूली 1800 से 2000, नेनुआ 600 से 800 रुपये कुंतल और करेला 1500 से 1600, भिंडी रहा भैया 600 से 800 रुपये कुंतल, लौकी 300 से 500 और कोहरा रहा 300 से 500 रुपये कुंतल, धनिया 4000 से 5000 रुपये कुंतल, परवल 6000 से 7000 और कुंडू रहा 1800 से 2000 रुपये कुंतल, अदरक 7000 से 8000 रुपये कुंतल, मिर्च हरी 3500 से 4000 रुपये कुंतल, कटहल 1000 से 1200 और बोधी रहा भैया 2000 से 2200 रुपये कुंतल,
4: अच्छा अच्छा,
5: पालक 1800 से 2000 रुपये कुंतल, चौराई लाल वाला 800 से 1000 रुपया कुंतल और चौराई हरा 800 से 1000 रुपया कुंतल, नींबू 200 से 250 रुपया सैकड़ा। ये रहा रावसगंज मंडी के बाजार भाव, बाबूलाल मोर भैया भेजले रहन कुंतल में, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद हो भैया, लेकिन एक मन मनसाइन के साथ।
4: तो भैया मन मनसाइन के बात आ गई तो पंचम प्रसाद उनका संगतिया भैया के एक गीत गौना इसके साथ धन्यवाद दिया जाए।
5: बिल्कुल भैया सुनाओ।

0: बाबा के शान बढ़ी गई ले।
1: काहे नहीं।
0: कितना बढ़िया जो पंचम प्रसाद उनकर संगतिया भैया मनमन शान करोलन, आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद बा। और लेकिन भैया देखा हम लोग जौन बा खेती की तैयारी करे थे उनमें हम लोग के जौन बा की जितना मृदा के ध्यान देने की जरूरत है उतने बीज शोधन पर भी ध्यान देने की जरूरत हो।
1: काहे नहीं, अगर माटी हम लोग उनके सही रही तो भैया देखा वो हमें तरह तरह के कर किरौना रहलन तो वो से हम लोग उनके निजात मिल सके। और सबसे गुड़ बात तो भैया देखा ये होला कि समय जून के महीना चलत बा और ऐसने में हम लोगन के गर्मी के जुताई करब जरूरी बा। गर्मी के जुताई कैले से न हम लोगन के माटी के भीतर जौन कर किरौना के अंडा लार्वा रहला वो देखा सब नष्ट हो जालन। यही बात के साथ भैया अब किसान भैया लोगन से पंच भैया लोगन से निहोरा कर है भैया अब गर्मी की जुताई अपन खेत के कर ला और कर के किरौना से बचा ला, माटी के शोधित करा और बीज के भी शोधन करा।
0: तो भैया अब हम लोग के विदा लेवे के समय आ गिल, फिर अगले दिन फिर जो बाकी नया जानकारी के साथ हम लोग बैठकी में आवल जी। तो चल जा भैया।
1: हाँ
0: सब पंचन के
1: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत एफएम 102.7 पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। समय हो गया है कार्यक्रम लोकगीत का। इसमें आज के कलाकार हैं पंचम प्रसाद और साथी। सबसे पहले सुनते हैं इनका गाया ये विरह गीत।

आकाशवाणी उभरे से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोकगीत कलाकार हैं पंचम प्रसाद और साथी। समय हो गया है शाम के 7:05 और 18 सेकंड। अगला लोकगीत आइए सुनते हैं बिरहा।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, इसमें आज के कलाकार थे पंचम प्रसाद और साथी। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, समय है स्थानीय सूचना और कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले सूचना सुनिए। खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना, पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार आरती पुत्री स्वर्गीय भैरव निवासी गजराजनगर थाना ओबरा जनपद सोनभद्र, जो दिनांक 13 मार्च 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 22 वर्ष, लंबाई 5 फीट, हुलिया सामान्य है, पहनावा सफेद सूट और प्लाजो पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार पूजा पत्नी सुनील कुमार निवासी ग्राम इनम थाना शाहगंज जनपद सोनभद्र, जो दिनांक 1 मई 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 25 वर्ष, लंबाई 5 फीट, हुलिया गोरा रंग, गोल चेहरा, एकहरी बदन है, पहनावा हरे रंग की साड़ी पहने हुए हैं। साथ में ले जाने वाली वस्तुओं का विवरण 50,000 रुपए नगद, झुमका, पैजनी, मांग टीका, नथिया, पायल, अंगूठी तथा डबल मंगल सूत्र है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई।

रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा करंट अफेयर्स। भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम थीमा जन विश्वास इज ऑफ डूइंग बिजनेस आप सुनेंगे रात्रि 10:25 पर। ये थी जानकारी सभा के शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का उभरा केंद्र, कृपया प्रतीक्षा करें हमारे अगले प्रसारण की।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी पहल। और आईआईटी कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम, साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियाँ सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आज लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो अपनी विकास यात्रा की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है।
4: भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है, और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ।
2: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में आयोजित जन कल्याण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। इसी क्रम में प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने पीलीभीत के बनकटी में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। श्री प्रसाद ने कहा कि एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल में गरीबों को पक्का मकान देने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से लखनऊ में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून तक 110 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा और मांग के अनुरूप बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। श्री योगी ने कहा कि नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
4: प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है।
2: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। संशोधित समय के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एनटीए ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ वर्कशीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना है।
6: इसका मुख्य उद्देश्य एक साइबर वॉरियर्स की ट्रेनिंग है। साइबर प्रोटेक्शन की हर एक देश को इस समय अत्यधिक आवश्यकता है। मैं एडमिशन जेई एडवांस के द्वारा नहीं होगा, एडमिशन एक हैकाथॉन मुख्यतः के द्वारा होगा और इसका उद्देश्य है ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढना जो कि प्रारंभ से ही इस दिशा में रुचि रखते हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं।
2: केंद्र सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में आज 4 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना थाना आसीवन क्षेत्र में हुई जब एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई।

मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी ये पहल। और आईआईटी कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम। साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास के गाए इस गाने तक, जिसे हमने लिया है फिल्म बाहर आने तक से। गीत लिखा है इब्राहिम अश्कनी, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
4: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण और कार्यक्रम में सबरस। अगला गीत आइए सुनते हैं सपने साजन के फिल्म से, और इस गीत को गाया है अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल ने। गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
5: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
6: हेलो,
4: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
5: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
4: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
5: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
4: ओनली ऑन AIR ओबरा।
5: इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी ओबरा और समय हो गया है शाम के 7:46। अगला गीत आइए सुनते हैं, अनु मलिक के संगीत निर्देशन में नवाब आरजू का लिखा हुआ। आवाजें हैं साधना सरगम और कुमार सानू की। फिल्म है गैम्बलर।

0: अभी आप सुन रहे थे हीरो नंबर वन फिल्म का गीत, जिसे गाया था उदित नारायण के साथ साधना सरगम ने। गीत लिखा था समीर ने और संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने।
1: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सबरस कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं इंडियन बाबू फिल्म से कुमार सानू की आवाज में। शब्द रचना समीर की और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश खिदमत है सुगम संगीत, इसमें हम लेकर हाजिर हैं चंद गैर फिल्मी गजलें। पहली गजल पेश खिदमत है भूपेंद्र सिंह की आवाज में, कलाम है इब्राहिम अश्क का।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप लुत्फ ले रहे हैं चंद गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत में। अगली गजल पेश खिदमत है गुलजार की लिखी हुई पुरकशिश आवाज है जगजीत सिंह की।

0: अभी आप सुन रही थी नदीम श्रवण की बनी तर्ज पर समीर के लिखे इस गाने को। आवाज थी साधना सरगम और कुमार सानू की फिल्म थी दीवाना।
1: जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: आकाशवाणी उबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत चोर और चांद। आइए सुनते हैं इस फिल्म में एसपी बालसुब्रमण्यम अनुराधा पौडवाल को।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी हम सुन रहे थे दिलीप सेन और समीर सेन की बनाई तर्ज पर गुलशन बावरा के लिखे इस गीत को। आवाजें थी आशा भोसले और कुमार सानू की, फिल्म थी जुल्मे। इसी गीत के साथ कार्यक्रम

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें सुनिए चंद गैर फिल्मी गजलें। पहली गजल आइए सुनते ही चंदन दास की आवाज में, कलाम है इब्राहिम अशफ़ का।

0: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: और अब आइए सुनते हैं संत दर्शन सिंह की लिखी ये गजल गुलाम अली की पुरकशिश आवाज में।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ एक क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 235,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार केरल माहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले दो दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जम्मू कश्मीर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude on the 28th of August.
2: Union Home Minister emphasized to further strengthen the security framework with extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Mr. Shah added that the senior officers of CAPF and the Jammu and Kashmir Police will continuously monitor arrangements at campsites throughout the pilgrimage route. He also emphasized for ensuring adequate arrangements for all essential services including pilgrim registration, accommodation, healthcare facilities and disaster management. With Dipendra Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
6: Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata on the occasion of 12 years of the NDA government at the centre. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. He said that by giving fair price, West Bengal government is taking the lands from common people and handing it over to the BCF. The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
7: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
6: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the measures taken by the government towards positioning India as a global leader through its foreign policy. A report.
8: Over the last 12 years, India emerged as a formidable global leader driven by bold initiatives that fuse ambition with action. Prime Minister Narendra Modi's leadership has anchored these efforts in responsibility and inclusivity, ensuring India's voice resonates across global platforms. India strengthened its old relationship while making new friends, infusing fresh energy into India's foreign policy while keeping the principle of India first supreme. Humanitarian assistance and disaster relief operations are a vital part of India's global engagement. Cyclone Dithwa made landfall on the eastern coast of Sri Lanka in November 2025, leaving hundreds dead, thousands displaced, and critical infrastructure damaged. Standing in solidarity with the people of Sri Lanka, India launched Operation Sagar Bandhu to provide immediate humanitarian assistance and disaster relief to Sri Lanka. The effort brought together the Indian Navy, Air Force, Army, and disaster response team in a coordinated rescue and relief operation. India provided comprehensive support to Sri Lanka, including immediate relief supplies, medical aid, search and rescue assistance, and restoration of damaged infrastructure. Thanking the Indian government, Sri Lanka's Deputy Minister for Ports and Civil Aviation, Janit Ruwan Kodithuwakku, stated that India had shown immense warmth and solidarity toward the people of Sri Lanka.
9: We are very thankful to India because since the day this Dithwa happened, opened their warm heart to us and we really appreciate their help. We are very good friend of India and we would like to extend our thanks to Indian government and the Indian people on behalf of Sri Lankan government and the Sri Lankan people.
8: The major highlight of India's foreign policy came during the COVID-19 crisis. India launched the Vaccine Maitri initiative as a testament to its human-centered diplomacy. Since January 2021, India has supplied over 30.12 crore vaccine doses to 99 countries and two UN bodies. This included 1.51 crore doses gifted to over 50 nations and 5.2 crore doses through COVAX mechanism. Talking to Akashwani News, Dr. Jyotishko Biswas, a physiotherapist and yoga teacher based in Bangladesh, said that the rapid dispatch of the vaccines from India was a profound gesture of goodwill.
10: India jo kiya hamare liye vaccine.
11: At that time, India made a fast response and sent the vaccine to us. I also took that vaccine. It was very good for us, our relatives and all the countrymen. It was a very nice gift from India to the world. So for this, we are very grateful. Best wishes to the Indian government and the people. Many, many thanks to India.
10: India government and people ke liye bahut bahut dhanyawad.
8: In the last 12 years, India has stepped up as a global leader through impactful initiatives like Vaccine Maitri and Operation Sagar Bandhu that blend vision with execution. Its commitment to humanitarian aid and regional partnership is anchored in the civilization ethos of Vasudev Kutumbakam. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
6: Union Minister for Culture and Tourism, Gajendra Singh Shekhawat, has said that the Modi government is committed to the conservation and restoration of India's cultural heritage. In an exclusive interview with Akashvani News, he said, under the mission to bring back stolen or smuggled antiquities from abroad, 670 sculptures and artifacts have been brought back so far. Mr. Shekhawat expressed confidence that this number will cross 1,000 by the end of this year.
12: Under the leadership of the Prime Minister, this initiative has been launched in mission mode under the name Gyan Bharatam Mission. We are digitizing our manuscripts. In this vision, digitization does not merely mean creating a digital copy or storing a digital version of these manuscripts. Rather, the objective is to bring them into a computer-readable format.
6: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the NewsOn AIR app. External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of three Indian lives. Our correspondent has the details.
13: The U.S. envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. The ministry said such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The U.S. Chargé d'Affaires was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operate in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi.
6: As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे।
1: कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: श्रोताओ
4: सुनो सुनो सुनो, गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई

0: बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, हीट वेव से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हाइड्रेशन की बहुत जरूरत होती है। इसलिए आपको छाछ और पानी का हर समय प्रयोग करना जरूरी है। हेल्दी ड्रिंक आप पीजिए, जैसे सादे पानी के अलावा अगर उसमें नींबू पानी डाल के पिए, या फिर ORS का घोल बनाकर पिए, या फिर नारियल पानी या छाछ कच्चे आम का पन्ना पीते हैं, तो इससे आप हीट वेव से बच सकते हैं। धूप और गर्मी से बचाव के लिए इन चीजों का जरूर ध्यान रखें कि आप 12 से 3 बजे तक बाहर ना निकले, और यदि किसी कारण निकलना हुआ तो अपने शरीर को सूती कपड़े से ढककर और टोपी पहनकर या साथ में छाता लेकर जरूर निकले, क्योंकि सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। आकाशवाणी ओबरा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में नौशाद का संगीतबद्ध किया ये गीत फिल्म दुलारी से।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
1: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में नूर दिवासी का लिखा हुआ। आवाज है आशा भोसले की और फिल्म है किस्मत।

आशा भोसले की गाये इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिस्र गीत अब समाप्त हुआ। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभर केंद्र से बोल रहे हैं। इसमें रात्रि के 9:30 होने वाली कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
0: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
0: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
0: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी ओबरा। समय हो गया रात्रि के 10:05 और 54 सेकंड। अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म कांटे से, कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में, शब्द रचना देव कोहली की और धुन तैयार की है आनंद राज आनंद ने।

कभी खुशी कभी गम, आइए सुनते हैं इस फिल्म में सोनू निगम और अलका याग्निक को जतिन ललित की बनाई तर्ज पर इस गीत को लिखा है समीर ने।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
1: इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी ओबरा और कार्यक्रम है रसधारा। कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं फिल्म क्रिश से श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाजों में। इस गीत को लिखा है नासिर फराज ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए, प्रस्तुत है भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम थीमा जन विश्वास इज ऑफ डूइंग बिजनेस।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आईं, उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
2: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है तो इस कन्वेंशन के बाद इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोविनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है तो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
2: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहां अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहां परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो वहां लेकर के जाऊंगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसके लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर के कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से

0: बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णुप्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पांस आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म की ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है, और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहां एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था, वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। यह हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे, उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया, 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पर काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोडमैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोडमैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन की आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा। आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या है, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जेन अल्फा होगी, बीटा होगी, जेन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे। जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे। और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी। और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था, देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर कहा कि श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किया गया और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे, क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने हैं। एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: क्योंकि भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अभी आप सुन रहे थे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम थीमा जन विश्वास इज ऑफ डूइंग बिजनेस। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं 102.7 एफएम पर। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ एक क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से एक

0: तो 20 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है, 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के उब्र केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अभी ही संपन्न होती है। कल सुबह 5:50 पर अपनी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।